मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल

0: बिल्कुल हुए थे।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं भक्ति संगीत से सराबोर वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देश गान के साथ।

0: कमलनाथ शास्त्री की ये भक्ति रचना भी आपने सुनी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में। इसी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चिंतन। आलेख है श्री जयशंकर शर्मा का।
1: जीवन क्या है, जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप और लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके कारणों को जिसने समझ लिया, समझना चाहिए कि उसे जीवन समुद्र में सुरक्षित नौकायन का मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई, उसने जीवन जीने की कला को आत्मसात कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, हमेशा आनंदमय आत्ममुग्ध जीवन व्यतीत करता है, आनंद का उजास फैलाता है। जीवन को आनंदमय अवसाद रहित बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचाने, मन विवेक और बुद्धि को जागृत, संतुलित और निरपेक्ष बनाए, काम क्रोध लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का दमन करें, उसके लक्ष्य की सार्थकता को हासिल करने का प्रयास करें। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति के मार्ग का अनुसरण करें, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का परिपालन करें, मानसिक दुर्बलता और आंतरिक अस्त व्यस्तता के नियमन और उच्च संतुलन के द्वारा मनुष्य की शक्तियां संगठित होती हैं, एकाग्रता और तन्मयता के जरिए उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सकता है, इंद्रिय निग्रह और कठोर अनुशासन से उसे नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। एक बार हमने खुद को, संसार को और जीवन के आदर्श उद्देश्यों को आत्मसात कर लिया तो समझिए कि हमने सत्य को जान लिया। हमें ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि संशय, अविश्वास और अंधविश्वास मानव मन का तमस है, जिसकी उपस्थिति में सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी पथभ्रांत होकर अपने लक्ष्य से दूर रह जाता है। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दीवा में सोता जागता जग जीवन। सचमुच अगर सुख ही सुख रहे तो वो भी उत्पीड़न ही है, सिर्फ दुख ही रहे तब तो मनुष्य जीवन से आजीज आ जाए। सुख और दुख दोनों ही दिन और रात की तरह विद्यमान रहें तो ही जीवन जीवन है। समृद्धि और संपन्नता को सुख का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। हम ऐसे हजारों लोगों को देखते हैं जो समृद्धि और सुख सुविधाओं की बुलंदी पर हैं। उन्हें जीवन यापन की हर सुविधा और संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वो सुखी नहीं नजर आते, किसी न किसी रूप में दुख भी उनके साथ मौजूद है। इसी तरह विपन्न से विपन्न व्यक्ति भी हमेशा दुखी ही नहीं रहता, जीवन की मुस्कान उसके ओंठों पर भी दिखाई देती है, विपन्नता उसकी मुस्कान छीनने में समर्थ नहीं होती। हमारे देश में बड़प्पन धन संपत्ति या शान शौकत नहीं, बल्कि सद्गुण, आदर्श व्यक्तित्व और महान बनाने वाले गुणों को महत्व दिया जाता रहा है। देश की महान विभूतियों पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो बड़े और श्रद्धेय इसलिए नहीं माने जाते कि वो संपन्न और कुलीन परिवार से थे, बल्कि इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी की बजाय सरस्वती के स्तवन को महत्व दिया, सेवा त्याग और संतोष पथ के राही बने, काम क्रोध लोभ और अहंकार से दूरी बनाकर सेवा के राजमार्ग पर चले। भले आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। एक फ्रेंच कहावत है, जीवन आधा बीत चुका होता है जब हम सोचते हैं कि जीवन क्या है। विक्टर ह्यूगो कहते हैं कि जीवन एक पुष्प है और प्रेम उसका मधु। महाकवि दिनकर ने उसकी व्याख्या इस तरह की है,

0: हिमालय से अटल हैं, सत्य पर हिलते नहीं, आग पर चलते हुए भी जो चरण जलते नहीं, उन पगों के रज कणों का नाम केवल जिंदगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री जयशंकर शर्मा का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। गायक स्वर है ए हरिहरन का और संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 184, 184।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक स्वर था ए हरिहरन का और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। बसंत सिंह से अब सुनते हैं कृषि चर्चा, विषय है जलवायु परिवर्तन का मछली पालन पर प्रभाव।
1: नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को मछली पालन पर प्रभाव। आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बदलते मौसम, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है बल्कि किसान और मत्स्य पालक को आजीविका पर भी गहरा असर डाल रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, मछली पालन जो लाखों लोग के लिए रोजगार और पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है, अब इस बदलते परिस्थिति से जूझ रहे आखिर यह बदलाव मछलियों में जीवन उत्पादन और किसान का आय को कैसे प्रभावित कर रहा है और इससे निपटने का क्या क्या उपाय हो सकता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन से मत्स्य पालन में क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय तक मौसम में पैटर्न या बदलाव, जैसे तापमान बढ़ना, वर्षा का अनियमित वृद्धि होना, इसका सीधा प्रभाव मत्स्य पालन पर पड़ता है क्योंकि मछलियों पूरी तरह पानी का वातावरण पर निर्भर होता है। जब पानी का तापमान या पानी का गुणवत्ता बदलता है तो मछलियों के वृद्धि या मछलियों के प्रजनन या जीवित रहने की क्षमता प्रभावित होता है। इससे उत्पादन घट सकता है और किसान का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पानी का तापमान बढ़ने से मछलियों को असर पड़ता है। जैसे कि पानी का तापमान बढ़ने से मछलियों का मेटाबॉलिज्म तेजी से होता है, इससे उन्हें अधिक ऑक्सीजन और भोजन का आवश्यकता होती है, लेकिन गर्म पानी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है जिससे मछलियों तनाव में आ जाता है, इससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, उनके ग्रोथ रुक जाता है, रोगों का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभी मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। कुछ प्रजातियां उच्च तापमान सहन नहीं कर पाती। अनियमित वर्षा और बाढ़ में मत्स्य पालन का प्रभाव कैसे पड़ता है? अनियमित वर्षा, अगर ज़्यादा वर्षा हो गया तो अचानक बाढ़ से तालाब और झील का संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़ के दौरान मछलियों बह सकती है, तालाब का संरचना टूट सकता है और पानी में गंदगी युवा प्रदूषण बढ़ सकता है। प्रदूषण बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, इससे मछली पालन का उत्पादन में भारी गिरावट आता है। साथ ही बाढ़ के बाद नई बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाती है जिससे किसान भाइयों के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान या हानिकारक हो सकता है। जल का गुणवत्ता पर जलीय परिवर्तन का असर कैसे पड़ सकता है? जलवायु परिवर्तन में पानी का गुणवत्ता खराब हो सकता है। तापमान बढ़ने से पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है और अमोनिया व अन्य हानिकारक पदार्थ का मात्रा बढ़ सकता है। इससे मछलियों के अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता। खराब पानी से मछलियों को बीमार पड़ती है और उनका वृद्धि प्रभावित होता है और मछली स्ट्रेस में आके प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। इससे उनको ग्रोथ नहीं होने से अल्टीमेट हमारे किसान भाई को ही नुकसान होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे छोटे किसान भाइयों हैं उनको जलवायु परिवर्तन से क्या असर पड़ सकता है? छोटे किसान या सीमित किसान जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होता है क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी और तकनीकी की कमी होता है। बाढ़ या बीमारी के कारण उनको पूरी तरह फसल नष्ट हो जाता है, इससे उनका आय घटता है और आजीविका संकट में पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा उनको आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किन किन उपाय किया जा सकता है। जैसे कि बेहतर जल प्रबंधन, सहनशील मछली प्रजाति का चयन, आधुनिक तकनीकी का उपयोग, जैसे आधुनिक तकनीकी एरिएटर हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, मौसम का सही जानकारी के आधार पर योजना बनाना,

0: इन उपयोग से नुकसान की कमी किया जा सकता है और उत्पादन बनाए रखने की जा सकती है। और जलवायु परिवर्तन से किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि उनको आर्थिक को लंबे समय मौसम को पैटर्न बदलाव जैसे तापमान बढ़ाना, वर्षा का अनियमित वृद्धि होना, उसको सीधा प्रभाव मत्स्य पालन पर पड़ता है, क्योंकि मछलियों पूरी तरह पानी का वातावरण पर ही निर्भर करता है। जब पानी का तापमान या गुणवत्ता बदलता है तो मछलियों का वृद्धि या प्रजनन या उसका ग्रोथ रेट रुक जाता है, इससे प्रभावित होता है, इसका उत्पादन घट सकता है और किसान का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।
1: जलवायु परिवर्तन का मछली पालन पर प्रभाव, इस विषय पर कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे बसंत सिंह से। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर और करंट अफेयर्स कार्यक्रम 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा अमान अली बंगश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:00 सुनिएगा यूनुस हुसैन का खां का गाया राग बिहागड़ा में ख्याल। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में 1:30 पर सुनेंगे विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग भटियार में ख्याल। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां शाम 6:30 पर।

नवा अभियान कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे सुनिएगा आम के फल से शरीर का पोषण विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र राजन, पूर्व निदेशक केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से नेमी चंद साहू की बातचीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर और दिन में 11:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे।

सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर। कलाकार होंगे चंद्रकांत गंधर्व। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी आशा भोसले। सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत सुनिएगा विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत। नमस्कार रायपुर कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की ही तरह सुबह 7:05 पर। इसमें आज सुनिएगा दीप्ति योजना के संबंध में सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से श्री भीम सिंह से खास बातचीत। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी डॉक्टर कुलदीप सोलंकी से विशेष बातचीत। साथ ही सुनिएगा राष्ट्रीय आम महोत्सव पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल से विशेष बातचीत। सुबह 11:05 पर अनुराग धारा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार होंगे गणेश पंडित और साथी।

युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसके मुख्य आकर्षण आज होंगे क्रम आजकल, छोटी शुरुआत बड़ी जीत, क्रम एक मुलाकात में भेंट वार्ता सुनेगा, रंगमंच और अभिनय

मैं अभिनेता वाराणसी के श्री अमितेश तिवारी से बातचीत, साथ ही सुनिएगा अपनी पसंद के गीत। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात केंद्रित होगी खेती माँ ड्रोन अपनावन लागत घटाव विषय पर। हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया और रख रखाव। विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले

0: एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनते हैं सूचनात्मक कार्यक्रम। नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। दोस्तों, सुबह की इस ताजी हवा में चाय की खुशबू के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए खबरें, इतिहास के पन्नों से कुछ खास बातें, समाज से जुड़े मुद्दे और ढेर सारे सकारात्मक विचार, ताकि आपके दिन की शुरुआत हो मुस्कान और प्रेरणा के साथ। दोस्तों, आज है 29 मई और इतिहास के पन्नों में आज का दिन कई मायनों में खास माना जाता है। आज के दिन साल 1953 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक मानव कदम पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के एडमन हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गो ने इस असंभव लगने वाले सपने को सच किया था। ये दिन हमें सिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई दूर नहीं। साथ ही आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पानी बचाना, पेड़ लगाना और खुद को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, मई का महीना अब विदाई की ओर है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां, आम की ठंडी, शिकंजी का मौसम और मानसून की आहट, हर तरफ मौसम बदलने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन समय में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आते हैं। ऐसे ही एक महान कलाकार थे, बॉब होप। 29 मई 1903 को जन्मे बॉब होप सिर्फ अमेरिका के मशहूर हास्य अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने हास्य और सकारात्मक सोच से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। रेडियो, फिल्में, टेलीविजन और लाइव स्टेज, हर मंच पर उन्होंने लोगों को हंसाया। खास बात यह रही कि युद्ध के कठिन दौर में भी वे सैनिकों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाते थे। बॉब होप का एक बहुत खूबसूरत विचार है, जिंदगी आखिर में यादों का ही सफर बन जाती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाते हैं। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि आज के अच्छे पल भी हाथ से निकल जाते हैं। बॉब होप हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि उन खूबसूरत यादों का नाम है जिन्हें हम अपने लोगों के साथ बनाते हैं। कभी परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक या किसी जरूरतमंद की मदद करके मिला सुकून, यही पल आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। तो क्यों ना आज हम भी अपने दिन में कुछ ऐसे ही पल जोड़ें जो आने वाले समय में मुस्कुराहट बनकर हमेशा याद आए।

दोस्तों, अब बात एक ऐसी पहल की जो गांवों की महिलाओं को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र की में नई पहचान भी देगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीप्ति योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत

0: अतिरिक्त गांवों में अब सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, यानी ग्रामीण महिलाएं अब सौर ऊर्जा सिस्टम लगाएंगी और उन्हें चलाएंगी, उनकी मरम्मत भी करेंगी और इससे कमाई भी करेंगी। इस योजना की खास बात यह है कि महिला समूह अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेंगे बल्कि ऊर्जा सहकारी समिति बनकर सोलर सिस्टम की मालिक और संचालक भी बनेंगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत उन्हें वेंडर और चैनल पार्टनर के रूप में भी जोड़ा जा रहा है, यानी अब गांवों में बिजली और रोजगार दोनों की नई रोशनी पहुंचेगी। महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। पंचायतों के 25% मेंटेनेंस कार्य भी इन्हीं समूहों को दिए जाएंगे और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। तो आखिर सोलर दीदी मॉडल गांवों की तस्वीर कैसे बदल सकता है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर होगा और क्या छत्तीसगढ़ देश के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? इन्हीं खास पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि दीप्ति योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दीप्ति का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। बेसिकली क्या है कि जनरली हम लाइट जो मेन स्ट्रीम होती है वो ट्रांसमिशन लाइन से आती है ना? लेकिन कई जगह ऐसे हमारे दूर दराज के इलाके हों तो वहां पर कई जगह लाइट समय पर नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो जहां पर यूज होना वहीं पर प्रोड्यूस हो, तो बेसिकली इसको डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमारे पहले आपने सोलर इरिगेशन का देखा होगा कि वहीं पर सोलर से ही इरिगेशन हो रही है, तो एक एग्जांपल है। इसी तरह से ऐसे गांव हमारे जहां पर पहले बिजली नहीं पहुंची थी, अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सोलर से बिजली मिल रही है, तो वहीं पर प्रोड्यूस हो रही है, घर पे ही प्रोड्यूस हो रही है और वहीं पर मिल रही है उनको, इसको डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि आपने देखा होगा कि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन सिर्फ एज कंज्यूमर था, बाकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। जो भी इसको सप्लाई करने वाले हैं, वेंडर हैं जो सोलर सिस्टम लगाते हैं, उसमें महिलाओं की कोई उपस्थिति नहीं थी, या जो टेक्नीशियन है जो ये सिस्टम्स खराब हो जाते हैं उसको ठीक करने में महिलाओं का कोई प्रेजेंस नहीं था। तो एक तरह से, और जब लाइट नहीं होती है, कहीं से दूर से पानी लाना पड़ता है या कुकिंग के लिए लकड़ी लानी पड़ती है ना, तो इस सब में महिलाओं को ज्यादा दुख पहुंचता है, उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बेसिकली ये वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए सोचा गया कि इसको वुमेन को इन्वॉल्व करेंगे तो उनको इससे फायदा होगा। गांव में जो है काम आते हैं, आप राइस मिल ले लो, छोटी राइस मिल, सब बहुत सारे जो है वो सोलर पे चल सकते हैं, और इसके लिए भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो उसके लिए भी जो अवेयरनेस, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई कहाँ क्या क्या चीजें उपलब्ध है मार्केट में।
0: सर, मेरा एक एक आखिरी सवाल ये है कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में ऐसी योजनाओं की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है?
1: बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अब देखेंगे आप, अभी जैसे ऑयल हमको मिल नहीं रहा है ना, लाइट बजाने पे हम, अब जो युद्ध हो रहा है उसमें बात चल रही है जैसे कम ऑयल करो, एनर्जी में कम खर्च करो ना, और तो ऐसे में जहाँ पर हमको इम्पोर्ट हम ज्यादा करते हैं बाहर से अपना ऑयल सारा, उसी पे हमारा सब एनर्जी डिपेंडेंट है। अब हमको अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनना है, सस्टेनेबल, तो ये सोलर एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है और इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे जब ये मान लो हम वेंडर बनाते हैं तो सारे इंस्टॉलमेंट जितने एक हम पता नहीं, हमारा टारगेट है 1,00,000 घरों पे जो है ये पीएम सूर्य घर का काम, वो टारगेट CLF को दिया जाएगा। तो इतना जब वो वेंडर में काम करेंगे, इतने एंटरप्रेन्योर होंगे, उनके नीचे और लोग उससे जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लखपति दीदी इसके थ्रू बनेंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि लखपति दीदी बनने का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत महत्व देते हैं, तो ये भी एक माध्यम होगा लखपति दीदी बनने का। साथ ही जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, भाई दूर दराज इलाके में कई बार लाइट नहीं होती है ना, कई बार कम लाइट आती है, कुछ गाँव ऐसे भी हैं अभी भी जो जुड़े नहीं है लाइट से है ना, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा इसका यूज है। और इम्प्रूव कुक स्टोव है, लैंटर्न्स है, होम लाइटिंग सिस्टम, बहुत सारे जो है काम आते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट गांव में लगती है, महिलाओं की सुरक्षा उससे बढ़ती है, सोलर, तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर इनका महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इससे अभी तक महिलाओं का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हमने इसको रखा है वुमेन DRE पॉलिसी रखा है इसका नाम।
0: सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस योजना के बारे में इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: दोस्तों, हम अक्सर दिल, दिमाग और फिटनेस की बात तो करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका सीधा असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और वो है हमारा पाचन तंत्र। आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान, फास्ट फूड, तनाव और देर रात तक जागना, ये सब हमारी पाचन प्रणाली को धीरे धीरे प्रभावित कर रहे हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं अब बहुत आम हो चुकी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अच्छा पाचन ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी होता है। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो शरीर में ऊर्जा भी बेहतर रहती है और बीमारियों का खतरा भी कम होता है। तो पाचन को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय को गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी। कुलदीप जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: जी नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और पाचन तंत्र हमारे पूरे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है।
1: बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। एक जो ओल्ड धारणा है कि अगर किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र स्वस्थ है तो उसका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, और ये आयुर्वेद की धारणा है और मॉडर्न मेडिसिन अब इसको एक्सेप्ट कर चुका है। इसलिए विश्व पाचन तंत्र दिवस मनाया जाता है, और उसके पीछे की सोच ये है कि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा शरीर रहेगा, वैसा हमारा मन रहेगा, वैसे हमारे विचार रहेंगे। और किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसका पाचन तंत्र स्वस्थ होना अति आवश्यक है।
0: जी सर, आजकल गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं बहुत आम होती जा रही हैं। क्या अनियमित खानपान और तनाव का सीधा असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है?
1: इसके तीन या चार मुख्य कारण हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अनियमित दिनचर्या, तनाव, ये तो डेफिनेटली हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं, और डिस्पेप्सिया, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज वगैरह की तकलीफ को बढ़ाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम अगर बात करें तो इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हम महंगा खा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं खा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा कि हमारा जो डाइट है वो बहुत रिफाइंड शुगर से भर गया है। जो रिफाइंड शुगर्स और रिफाइंड ऑयल, जो तेल हमारे

0: पाचन तंत्र को कमजोर करता है, खास करके पाम ऑयल। जितने भी जंक फूड बन रहे हैं या मार्केट में बिक रहे हैं, चाहे वो चिप्स हो चाहे अलग अलग नमकीन हो, वो बेसिकली पाम ऑयल में बनते हैं। इसके अलावा जो जंक फूड पिज्जा बर्गर पैटीज ये सब चीजें, इसमें भी पाम ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे जो पारंपरिक डाइट है उसमें वेजिटेरियन डाइट में चावल और दाल का मिश्रण एक संपूर्ण आहार बनाता था। ग्रेजुअली हम उससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रिशन में विश्व की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वह है दाल और चावल का मिश्रण करके भोजन बनाना, जो करीब करीब 18,000 साल पहले हमारे भारतवर्ष में हुई थी।
1: जी सर, एक सवाल और है कि सुबह की कौन सी अच्छी आदतें पाचन को बेहतर बना सकती हैं?
0: सुबह की अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं,
1: जी
0: एक ये आदत हर व्यक्ति को जिस भी एज का है वॉक करना पर्याप्त रहेगा। दूसरा, खाली पेट फ्रूट्स ना खाएं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कल्चर में आता जा रहा है, जो हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खाली
1: जी
0: पेट फ्रूट ना खाएं और ब्रेकफास्ट जो है वो आदमी हैवी करे,
1: जी
0: हैवी करे जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की मात्रा एक संतुलित आहार के रूप में हो।
1: जी सर, क्या पर्याप्त पानी पीना और फाइबर युक्त भोजन लेना पाचन के लिए जरूरी है?
0: फाइबर युक्त भोजन बहुत जरूरी है। पानी अमूमन ये कहा जाता है, गर्मी का सीजन छोड़ दीजिए, 2.5 से 3 लीटर पानी विभिन्न प्रकार से आदमी को इंजेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक और मिथ को मैं डिक्लासिफाई करूंगा कि अगर कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है और
1: जी
0: भारत में भारतीय भोजन खा रहे हैं तो उसको फाइबर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खास करके छत्तीसगढ़ में के जो भोजन है वो तो फाइबर सुपर रिच है, तो ऊपर
1: जी
0: से फाइबर, जैसे हमारे यहाँ भाजियां बहुत खाई जाती हैं, तो और फाइबर पे ज्यादा फोकस ना करके आदमी प्रोटीन पे फोकस करे। प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये
1: जी
0: फॉर्मूला हमारा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का है जिसपे हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है विगत कुछ वर्षों में। प्रति व्यक्ति प्रति माह 2.5 किलो दालें, अगर 4 व्यक्ति हैं किसी घर में बच्चे मिला के, तो 10 किलो दाल किचन में खत्म होनी चाहिए, खपनी चाहिए,
1: जी
0: इस पे फोकस करे। और जो स्नैक्स बच्चा खा रहा है उसमें चने हो, उसमें मूंगफली हो, उसमें दालें हो, ये स्नैक्स भी इस प्रकार से बच्चा खाए कि ये चना का मुर्रा जो पुराने जमाने में खाते थे बच्चे लोग,
1: जी
0: उसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है। चना बूट हो गया, मूंगफली हो गई, या इनसे बनी हुई चीजें ये स्नैक्स के रूप में खाएं। क्योंकि हमारे बच्चे और वयस्क एक स्टडी के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 50% प्रोटीन भी उनके बॉडी में नहीं जा रहा है, उनकी डाइट में नहीं
1: जी
0: जा रहा है। हालांकि डाइट का कीमत कॉस्ट महंगा खा रहे लेकिन अच्छा नहीं खा रहे।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: लकी ड्रॉ या गिफ्ट फ्रॉड बहुत प्रचलित यह फ्रॉड है। लकी ड्रॉ या गिफ्ट फ्रॉड में आपको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मैसेज या कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप पिछली ऑनलाइन खरीदारी के कारण एक कार जीत चुके हैं। यदि आपको कार चाहिए तो कॉलर के द्वारा बताए जाने वाले प्रोसेस को अपनाना होगा। या स्कैमर्स आपको कार के बदले मोटी रकम देने की बात करते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस या टैक्स के नाम पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। आपसे पुनः अपील है, किसी भी प्रकार के सस्ती डील और लालच में ना आए। आपसे आग्रह है कि आप इस प्रकार के लालच में ना फंसे, जागरूक रहें, सतर्क रहें।
2: दोस्तों, गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है और जिसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। रायपुर में आज से कृषि महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 29 मई से 31 मई तक चलने वाले इस खास आयोजन में आम की 250 से ज्यादा किस्में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। यानी एक ही जगह पर देश भर के अलग अलग स्वाद, खुशबू और रंगों वाले आम, दशहरी, लंगड़ा, अल्फोंसो से लेकर कई दुर्लभ और स्थानीय

0: नई किस्में भी यहां आकर्षण का केंद्र होंगी। ये महोत्सव सिर्फ स्वाद का उत्सव नहीं बल्कि किसानों, बागवानी विशेषज्ञों और आम प्रेमियों के लिए नई जानकारी और नए अवसरों का मंच भी है। यहां आम के उत्पादन, नई तकनीक, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी भी साझा की जाएगी। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। गिरीश जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि राष्ट्रीय आम महोत्सव का उद्देश्य क्या है।
1: इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विगत 2 वर्षों से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कर रहा है और इस बार के राष्ट्रीय आम महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो किसान है, जो आम उत्पादक समूह है, जिसके जो और जो लोग प्रसंस्करण में इसमें कार्य कर रहे हैं, उद्यमी है, निर्यात संस्करण उद्योग में नीति निर्माण करने वाले जो लोग हैं, इन सबको एक मंच पे लाया जाए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आम के उत्पादन की तो समस्याएं उत्पादन तो हम बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे करें, इस पे किसान भाइयों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: जी सर, इस बार रायपुर में आयोजित महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत क्या रहने वाली है?
1: देखिए, इस बार जो रायपुर में हम आम महोत्सव करा रहे हैं उसमें 6 प्रदेशों से करीब करीब 250 आम की प्रजातियों का हम पूरा एक प्रदर्शनी लगाए हैं और इस प्रदर्शनी में सभी आम के अलग अलग गुण दोषों को भी ग्राफिकली समझाया गया है। तो इससे इस बार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम की विविधताएं कितनी है और कौन से आम के क्या उत्पाद बन सकते हैं।
0: जी।
1: और जैसे एक हाथी झूल होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो बायोडायवर्सिटी जो है आम की, उसमें हम पूरा उसका 250 प्रकार के आम का करेंगे। जैसे इसमें आप अगर देखेंगे तो लंगड़ा भी होगा, नीलम भी होगा और लखनऊ से और कानपुर से आने वाली जो वेराइटीज है उन सभी का इनमें इस बार प्रदर्शनी की जाएगी। साथ ही साथ इनमें 4 हम मुख्य और कार्य कर रहे हैं जिसमें आम की किस्मों के लिए प्रतियोगिता भी रखी गई है, आम के खाद्य उत्पादकों की एक प्रतियोगिता रखे हैं हम, आम की सजावट की भी प्रतियोगिता है और पौधों के विक्रय का भी एक केंद्र होगा। तो ये एक तरीके से इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं रायपुर शहर की और हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनरल पब्लिक है वो भी आके देख सके और आम जो फलों का राजा होता है उसका लुत्फ उठा सके, ये हमारा प्रयास है इस बार।
0: जी सर, एक सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में आम की खेती की वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या यहाँ इसकी अच्छी संभावनाएं हैं?
1: देखिए, वर्तमान में तो हमारे यहाँ आम की खेती होती है लेकिन उस स्तर पर नहीं होती कि उसकी कमर्शियलाइजेशन के इम्पेक्ट हो सके, लेकिन संभावनाएं अपार है। अभी जैसे मैं आम के बताऊं तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो होने वाले जो आम है, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, नीलम है, ये तो लोग बहुत लगाते हैं, आम्रपाली है, चौसा है, ये लगा रहे हैं, लेकिन इसका हम केवल क्या करते हैं कि होने के बाद खाने में सेल करके खत्म कर देते हैं। अगर किसानों को आगे प्रसंस्करण की ओर बढ़ाया जाए जिसमें तकनीक आ गई है, जिसमें उसकी ट्रेनिंग कर रही है, एपीडा जो है भारत सरकार ने अभी इसकी प्रसंस्करण के लिए काफी तकनीक का विकास किया है, इरेडिएशन फैसिलिटी होती है एक इसका किया है, जैसे आम हमारे यहाँ जो उत्पाद हो रहे हैं उसको बहुत संभावना है कि हम उसको मिडिल ईस्ट में या यूरोप तक उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें।
0: जी।
1: तो इसके लिए जो पैकेजिंग फॉरवर्डिंग की जो तकनीक है और जो और तकनीकों का ज्ञान अगर हम किसानों को दें तो इसकी संभावना बहुत अच्छी है और ये बहुत ही लाभकारी होगा किसानों के लिए।
0: जी बिल्कुल। सर, क्या बदलते मौसम और बढ़ते तापमान का आम की फसल पर असर पड़ रहा है?
1: देखिए, बदलते मौसम में खासकर अभी छत्तीसगढ़ में आप अगर देखेंगे तो मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, थोड़ा संभावना इस बात की रहती है कि हवा जो है अगर तेज हवा और अंधड़ आता है तो उस समय थोड़ा से पके हुए आम में झड़ने की संभावना होती है, लेकिन तापमान अच्छा बढ़ने से तो आम बहुत अच्छा, उसके लिए पॉजिटिव इम्पेक्ट भी आता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के बदलते मौसम में अगर हम देखें तो उतना तो नहीं असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ी ये संभावनाएं हैं कि हम जब आम का बगीचा लगाएं तो आसपास विंड वाले रोकने वाले जो पौधे होते हैं वो जरूर लगा लें, तो इस पे थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो मुझे लगता है कि अभी क्लाइमेट चेंज का असर को हम मिनिमाइज कर पाएंगे।
0: जी,
1: मैं बस एक बात अंत में कहना चाहूंगा,

0: रामपुर शहर के सभी लोगों को और हमारे किसान भाइयों को मैं ये अनुरोध करूंगा कि इन 3 दिनों में आप अधिक से अधिक संख्या में आकर आम महोत्सव में जो हमारी हम लोगों ने जो तैयारी की है उसका लुत्फ उठाएं और बहुत अच्छे अच्छे आम का स्वाद भी चखें।
1: सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राष्ट्रीय आम महोत्सव को लेकर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सा।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचारों के लिए अब रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का।
1: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
5: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए

0: सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में

0: भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी धरती, हमारी धरा, हमारी पृथ्वी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और धरा को हम माँ के समान मानते हैं क्योंकि इस धरती से ही हमें जीने के लिए सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रोताओं, जब हम अपने आसपास की बात करते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे जीने के लिए हमें तत्व मुहैया कराते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। श्रोताओं, पर्यावरण की सुरक्षा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि इस पर्यावरण पर ही हम निर्भर हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी जीवित तत्व हैं उन्हें पर्यावरण पर ही निर्भर होना पड़ता है। और श्रोताओं, कई सालों से धरती का तापमान लगभग बढ़ता जा रहा है और इसका कारण और कोई नहीं, हमारी मानव गतिविधियां हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और श्रोताओं, इससे बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, जागरूकताएं पैदा की जा रही हैं जिससे कि पर्यावरण का क्षरण ना हो सके। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाने का भी दिवस होता है। तो श्रोताओं, पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रही है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में आज जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित है प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद।
0: तो तरुण जी, सबसे पहले कार्यक्रम में तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी जी, नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से आप सभी को नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर्यावरण विज्ञान विभाग में प्रोफेसर तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश मंडला के छोटे से गांव निवारी का रहने वाला हूं। बचपन से ही गांव की मिट्टी, जंगल और नर्मदा की धाराएं मेरे जीवन के सच्चे शिक्षक रहे हैं। शायद यही कारण है कि मैं पर्यावरण विज्ञान की ओर मेरा शोध क्षेत्र और झुकाव बना रहा है। पिछले 3 दशकों से मेरा अनुसंधान मुख्यतः 4 दिशाओं में चलता आ रहा है। पहला, रिमोट सेंसिंग एंड GIS तकनीक के माध्यम से जंगलों एवं वहाँ की भू उपयोग का अध्ययन करना। दूसरा, रेस्टोरेशन इकोलॉजी, पुनर्स्थापना परिस्थिति की पे अध्ययन करना, विशेषकर कोयला खदानों से क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्जीवन करना। तीसरा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आजकल कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और हरित और विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस का मूल्यांकन करना और पौधों की सहायता से प्रदूषित जल और मिट्टी की शुद्धिकरण करना। ये मुख्यतः 4 बिंदु हैं जिसपे मैं और मेरी टीम इस पर अनुसंधान करती है।
0: जी जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी, जैसा कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस की पहली औपचारिकता कहना चाहिए 1973 को मिली। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग थी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। उन्होंने इसको चलाने के लिए बातचीत किया, लेकिन इसकी नींव 1 साल पहले 5 से 16 जून 2072 को के बीच स्वीडन में रखी गई। उसको इन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो मानव पर्यावरण पर सम्मेलन जो हुआ, उसमें 113 लोगों के देशों ने इसमें सम्मिलित हुए। यह पहला अवसर था जब विश्व के सारे देश एक स्वर में स्वीकार किया कि पर्यावरण की रक्षा कोई भौगोलिक सीमाओं में बंधा विषय नहीं है, यह संपूर्ण मानवता का सामूहिक दायित्व है। उसी सम्मेलन की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने

0: 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक तीव्र औद्योगिकीकरण, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, अंधाधुंध उपयोग करना, जिससे हमारे पर्यावरण या प्राकृतिक प्रणालियां जो है वो असंतुलित हो गई या असंतुलित कर दिया। जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप के देश हो चाहे यूएस हो, इन्होंने अंधाधुंध खनन का काम किया, जिससे हमारी नदियों में रसायन का प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, जंगल बेहताशा कटने लगे, डिफोरेस्टेशन हो गया। तो ये सारे के सारे एक कारण है जिसकी वजह से हमको ये कहना पड़ा। और एक वैज्ञानिक रहे हैं अमेरिका के, रेचल कॉर्सन, उन्होंने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि इतना कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जिसको हम मौन बसंत मनाएंगे, जब पक्षियों के गीत भी, उनकी आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो यही एक वैश्विक चेतना जागी कि विकास और विनाश के बीच की रेखा बहुत पतली है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी आत्ममंथन का एक प्रतीक है। एक दिन जब हम रुक कर सोचें कि पृथ्वी ने हमको क्या दिया और हमने उसको क्या लौटाया, तो यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का उत्सव है। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमको इसकी आवश्यकता पड़ी।
1: जी तरुण जी, तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?
0: देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा में बात करें तो सीधा सीधा पहले कहा जाता था, या सभी गांव के लोग जानते हैं कि हमारे जो जल है, वायु है, भूमि है, किसी भी अवांछित पदार्थ यदि कोई ज्यादा मात्रा में जीवों के लिए हानिकारक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया। लेकिन अब की जो सदी है, 21वीं सदी है, इसमें ये परिभाषा अधूरी सी लगती है। अब तो नया आयाम ये आ गया, इसमें काले धुएं, गंदे पानी की बात नहीं कर सकते। अब तो जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म प्लास्टिक है, जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, जो आंखों में दिखाई नहीं देती, वो देखा जाए तो हिमालय की जो बर्फ है उससे लेके समुद्र की गहराइयों तक, माँ के दूध से लेके मनुष्य के रक्त में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। तो मैंने एक शोध भी किया था, हमारी टीम ने, जो बड़े प्रतिष्ठित प्रकाशन भी हुई अंतर्राष्ट्रीय, उसमें ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड वाटर जनरल, उसमें हमने ये दिखाया है कि सूक्ष्म प्लास्टिक है जो मृदा के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, पोषक चक्र होती है, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जाती है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो ई वेस्ट हम बोलते हैं, जो पुराने मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, भारी धातुओं के रूप में जितने मिट्टी को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रही है, ध्वनि प्रदूषण जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, लाइट पॉल्यूशन है, जिससे आप देखेंगे पहले जुगनू रात में टमटमाते थे रात में, उल्लू, चमगादड़, इनके भी जीवन चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और थर्मल पॉल्यूशन जो ताप का प्रदूषण है, हमारे जल स्रोतों को चुनौती दे रहा है और कहीं ना कहीं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। इसीलिए आज इसे परिभाषित करना कि मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उस संतुलित अवस्था में आया कोई भी ऐसा परिवर्तन जो वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य, जैविक विविधता, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करे, वही पर्यावरण प्रदूषण है। यदि हम संक्षेप में कहें तो प्रदूषण अब केवल भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक, जैविक और यहाँ तक कि सूचनात्मक भी हो चुका है।
1: जी जी जी तरुण जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो तरुण जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत हम सुने।
0: जी जी जी, अभी हम गीत की बात करें तो जो एक गीत आप सभी ने सुना होगा, पहले भी 1957 की फिल्म आई थी नया दौर, एक प्रसिद्ध गीत था, साथी हाथ बढ़ाना।
1: जी जी तरुण जी, तो आइए सुनते हैं तरुण जी की पसंद का ये गीत।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी से, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तरुण जी, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे थे, चूँकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए अभी 2026 के दौर की हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
1: जी जी, सटीक प्रश्न है आज के समय के अनुसार, और 2026 के परिच्छेद

0: में हम जिस संकट के मुहाने पर खड़े हैं, वैज्ञानिक उसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस अर्थात त्रिआयामी ग्रहणीय संकट कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। ये तीन चीजों का संगम इसमें है, परंतु यदि किसी एक चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो तो वह हम जलवायु परिवर्तन जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं उससे जुड़े जो संवेदनशील बिंदु है जहां से परिस्थितिक क्षति को वापस लौटाना असंभव हो जाता है। यदि हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, मौसम विज्ञान संगठन की, उसकी नवीन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक तापमान जो है औद्योगिक काल पूर्व स्तर से लगभग 1.5 से 1.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है। पेरिस एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हमारी होती है उसमें हमने ये कहा था पेरिस समझौते में कि 1.5 लक्ष्मण रेखा होगी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमारा टेम्परेचर 2030 तक नहीं जाना चाहिए, उसे हमने अभी 2025-6 में छू लिया है। तो हमारे अपने मध्य भारत में यदि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में असाधारण लू महसूस होती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, लंबे काल तक शुष्क दिन देखने पड़ते हैं। ये सभी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने इसमें एक हमारी अपनी रिसर्च टीम ने एक अध्ययन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट एंड जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ऐसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हमने प्रकाशित किया हमारे रिसर्च को जो पिछले 30 वर्षों में हमने अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में किया है। तो उसमें ये पाया है हमने कि वर्षों से भूक्षरण और कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी से हुआ है और क्षेत्रीय जलवायु को सीधे प्रभावित कर रहा है। हमने अनूपपुर, शहडोल, कोरबा, बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के चित्रण जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमाणित किया है कि भूक्षरण की वर्तमान दर अत्यंत चिंताजनक है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट का एरिया भी धीरे धीरे कम हो रहा है और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के अनेक नगर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 होते हैं, इसके स्तर में सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में हमारे देश के महानगर हैं। प्रतिवर्ष इससे 16 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो रही है। यदि हम तीसरी बड़ी चिंता करें तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पृथ्वी पर छठे महाविलोपन जो 6 मास एक्सटेंशन के दौर से गुजर रहे हैं, जो पहली बार किसी एक प्रजाति अर्थात मनुष्य के कारण हो रहा है। इसलिए 2026 की सबसे महत्वपूर्ण चिंता एक संकट नहीं बल्कि संकटों का संगम है और इनसे निपटना अब विकल्प नहीं अनिवार्यता बन चुका है। क्योंकि आने वाला समय, अभी टेम्परेचर हम देख रहे हैं तो दिनों दिन 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर तक कुछ जगह हो जा रहा है, तो अब इससे अनिवार्य रूप से हमको मिलकर आगे बढ़ना है।
1: जी जी जी तरुण जी, तो प्रोफेसर तरुण जी, जब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, डेवलपमेंट की, तो विज्ञान और तकनीकी ने आज 2026 तक जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है वैश्विक स्तर पर देखें। क्या हम आधुनिकीकरण की होड़ में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और क्या विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण के प्रदूषण को रोक भी सकते हैं?
0: जी जी जी, बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। मैं इसका उत्तर एक वाक्य से देना चाहूंगा। विज्ञान निरपेक्ष है, हमारी दृष्टि सापेक्ष है। विज्ञान और तकनीक स्वयं में ना तो दूषित है और ना ही पवित्र है। यह हम मनुष्य हैं जो अपने उद्देश्य और अपने जीवन शैली के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक उदाहरण हम देंगे, अग्नि का आविष्कार मानव सभ्यता का आधार बना, परंतु वही अग्नि यदि जंगलों में लगा दी जाए तो पूरा फॉरेस्ट एरिया हमारा जल के राख कर देती है, पूरा विनाश कर देती है। यह सत्य है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हो हमारे, चाहे पेट्रोल डीजल वाहन हो, रासायनिक उद्योग हो, प्लास्टिक हो, इन सब ने प्रदूषण को बढ़ाया है। परंतु यह उतना भी सत्य है कि समस्याओं का समाधान भी साइंस और विज्ञान से ही निकले हैं। आज विज्ञान हमें सौर ऊर्जा प्रदान कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से हम अपना फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक दे रहे हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस तकनीक के माध्यम से हम दूर दराज की चीजों की निगरानी, जांच पड़ताल और चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये साइंस की ही देन है जो डेटा नीति निर्देशाओं को सही दिशा निर्देशित कर रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये सब हमारी कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में ही हमने फाइटोरिमेडिएशन के माध्यम से शोध का कार्य किया है, जिसमें जो बच पौधे होते हैं हमारे, बच और केना, इनके माध्यम से हम जो

0: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो घरेलू सीवर होते हैं और भारत जो धातु उसमें प्रदूषित जल का उपचार किया जाता है, तो ये विज्ञान के माध्यम से हम इसको हाथ मिलाकर सभी समस्या का सरलता से सस्ता और टिकाऊ इसका माध्यम निकल सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा हमें विज्ञान से डरना नहीं है, उसे विवेक से सही दिशा देनी है और उसका एक पॉजिटिव वे में उसका उपयोग करना है। जब विज्ञान नैतिकता और परिस्थिति की संवेदनशीलता के साथ जुड़ता है तभी सस्टेनेबल साइंस अर्थात टिकाऊ विज्ञान का जन्म होता है और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें जंगल जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो जंगल मानव अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं?
0: जंगल हमारे मानव इसकी यदि हम बात करें तो एक प्रकार यदि प्रकृति को हम माने कि एक हमारा जीवित शरीर है, तो जो जंगल है हमारे वन है वो इसके फेफड़े हैं। जैसे कि अमरकंटक की धरती से आपका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यह प्रत्यक्ष अनुभूति हम यहाँ करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक हेक्टेयर जो लैंड होती है हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो 6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, बदले में हमें ऑक्सीजन या प्राणवायु दे दी है, प्रदान करती है। हमने इस पे बहुत रिसर्च भी किया पिछले 3 दशकों से। यदि हम बात करें अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हम ये पाते हैं कि हमारे जो सूर्य रोबस्ट जिसको साल सरई का पेड़ बोलते हैं, सरई के पेड़ में 150 से 220 मैट्रिक टन कार्बन का स्टॉक होता है एक हेक्टर लैंड में। इसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, कार्बन स्टोरेज भी बोलते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे सतत प्राकृतिक ढाल है। हमारे जो जंगल है, हमारे जो वन संपदा है, ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। इससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण में जितने भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसको पेड़ पौधे के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु वनों का महत्व केवल कार्बन तक सीमित नहीं है, अपितु वन जल चक्र को भी संचालित करता है। यदि हम अमरकंटक की बात करें तो माँ नर्मदा, सोन, जोहिला, अरण्य, गायत्री, सावित्री, अमरावती जैसी नदियां अमरकंटक के वनों से जन्म लेती हैं। वन मिट्टी का क्षरण रोकती हैं, भूक्षरण का पुनर्भरण करती हैं, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आश्रय देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जो आदिवासी भाई बहनों का आजीवन का साधन है, संस्कृति है, उसकी अस्मिता का आधार है। अमरकंटक के आसपास मैंने ये देखा, स्वयं का देखा हुआ है कि यहाँ के जो जनजातीय समूह है संपूर्ण जीवन दर्शन इनका जंगलों वनों से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ पौधे के वन के केवल लकड़ी का स्रोत नहीं मानते, अपितु वह माता है, गुरु है, चिकित्सक है, अन्नदाता है। जैसे महुआ, चिरौंजी, तेल, तेंदू वगैरह, आंवला, हर्रा, बहेरा, यहाँ पर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये इन्हीं पे इनकी लाइवलीहुड या जीविका रहती है। हमने ये भी पाया अपने अध्ययन में कि 72 प्रकार के औषधीय पौध जो वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसको हमारे जो जनजातीय समुदाय के भाई बहन हैं वो उसको भोजन के रूप में और बड़े न्यूट्रिशियस होती है ये यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो वन जो है वो सभी के लिए, मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वन बचाना केवल पर्यावरण रक्षा नहीं, यह सभ्यता रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है और अंततः हमारी स्वयं की रक्षा है।
1: जी जी जी, धरती का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है, तो धरती का तापमान बढ़ना भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लाने वाला है?
0: आने वाली पीढ़ी के लिए यदि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़तेगा, जैसे मैंने IPCC जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी रिपोर्ट बताती है हमको 2018 के अनुसार 22 के अनुसार कि हमारा तापमान जिस गति से चल रहा है तो वैश्विक तापमान 2.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुनने में यह छोटा अंक लगता है परंतु इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। आज यह प्रश्न इस पीढ़ी से नहीं, हमारे बच्चे पोते की पीढ़ी से सीधा संबंध रखता है कि धरती का तापमान भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लेके आएगा। हम यदि 2-3 चुनौतियां आपके सामने रखूं, हिमालय के ग्लेशियर का तीव्र गति से पिघलना, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, तीसरा ध्रुव कहा जाता है ग्लेशियर को, यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण एशिया की लगभग सभी प्रमुख नदियों का स्रोत है। यदि ग्लेशियर तेजी से पिघले तो हमारे विनाशकारी बाढ़ आएगी और जितने भी आइलैंड छोटे हैं कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, जिससे जल संकट का गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरी चुनौती की यदि बात करें, समुद्र स्तर में वृद्धि, जितने भी कोस्टल एरिया है और जो अर्बन सिटीज हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जैसे तटीय महानगर जैसे सुंदरबन जैसा वेटलैंड, संवेदनशील क्षेत्र, ये सब डूबने से खतरे का सामना करेंगे। यदि हम धरती का तापमान बढ़ने की तीसरी चुनौती की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता, भारत की कृषि

0: आज भी 50% से अधिक मानसून पर निर्भर है। हमारे शोध ने यह दर्शाया है कि मध्य भारत में मानसून के प्रतिरूप बदल रहे हैं, कहीं अल्प वर्षा तो कहीं अति वर्षा, असाधारण अतिवृष्टि, ये बेमौसम ओलावृष्टि, असाधारण सूखा, ये हमारी खाद्य सुरक्षा को कहीं ना कहीं सीधे चुनौती दे रही है। और अगली चुनौती हमारी है सार्वजनिक स्वास्थ्य की। बढ़ती गर्मी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पहले नहीं देखा गया। और पांचवी चुनौती की मैं बात करूंगा, जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी लॉस है। जो क्लाइमेट रिफ्यूजी अर्थात जलवायु शरणार्थी हैं, वे लोग जो जलवायु के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक विश्व में 20 करोड़ से अधिक जलवायु शरणार्थी हो सकते हैं। परंतु मैं निराशा का संदेश नहीं देना चाहता। विज्ञान कहता है यदि हम अगले 10 से 15 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लें तो स्थिति नियंत्रित की जा सकती है।
1: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जो अभी हम देखते हैं युवा भारत की जो है एक नई तस्वीर गढ़ने को तैयार है, तो युवाओं का जो है भागीदारी पर्यावरण के संरक्षण में होना चाहिए, तो आप किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि युवाओं का पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में क्या भागीदारी हो सकती है?
0: एक्चुअल हमारा जो देश है भविष्य ही नहीं, इसका सशक्त वर्तमान भी युवा है। हमारे देश में 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो भारत न केवल अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है अपितु विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकता है। 3 दशक के अध्ययन काल में मैंने स्पष्ट पाया अपने खुद के इससे कि संवेदनशील जो विद्यार्थी पर्यावरण को पढ़ लेता है, इससे जुड़ता है, वो आजीवन उसका रक्षक बन जाता है। मैं यदि अपने पर्यावरण विज्ञान विभाग की बात करूं तो यहाँ 7 से 10 PhD बच्चों ने उपाधि प्राप्त की है और वो आज देश के विभिन्न संस्थानों में पर्यावरण के दूत बनकर कार्य कर रहे हैं। और इसका यदि योगदान की बात करें तो जो हमारे युवा हैं वो पर्यावरण जागरूक और जन संवाद के लिए जो हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया कर सकते हैं, उस पर अपना योगदान दे सकते हैं, नवाचार और हरित उद्यमिता ला सकते हैं। जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ग्रीन स्टार्टअप, क्लीन टेक, एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हैं और वो इसमें कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, सौर समाधान, अपशिष्ट पदार्थ, जैविक उत्पाद जैसे विषयों पर ये काम कर सकते हैं। और तीसरा सिटीजन साइंस अर्थात नागरिक विज्ञान। आज मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी युवा, कोई भी यंग वायु गुणवत्ता, जैव विविधता, नदी स्वास्थ्य का डेटा एकत्र करके वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अपने युवा साथियों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपके हाथ में मात्र मोबाइल नहीं पृथ्वी का भविष्य है। आप मात्र उपभोक्ता नहीं संरक्षक हैं। आप जिस रील्स को बनाते हैं उसे प्रकृति के लिए भी बनाइए। एक पौधा लगाइए, एक नदी को गोद लीजिए, एक गाँव को स्वच्छ बनाइए, फिर देखिए परिवर्तन कैसे आता है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी से। प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में और बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आज आपने जो जानकारी दी पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जो बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। नवा बिहान कार्यक्रम में अब सुनते हैं आम के फल से शरीर का पोषण विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र राजा।

0: जम्मो श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। हमर शरीर के पोषण बर फल ह बहुते महत्वपूर्ण होते। हमन ला नियमित रूप ले मौसम के अनुरूप मौसमी फल के सेवन करना चाहिए। अभी तो आमा के मौसम हावय। आम ह हमर शरीर बर कैसे लाभकारी है, ये संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर बातचीत करे हन भारत के प्रमुख आमा वैज्ञानिक पूर्व निदेशक केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी से। डॉक्टर राजन जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर राजन जी, आम के फल के शरीर के पोषण में क्या महत्व है?
1: आम स्वाद के अलावा अपने पोषण गुणों पौष्टिक गुणों के लिए भी मशहूर है। हम लोग को सभी को पता है, गांव में सुनने को मिलता था कि अगर एक सीजन में आम के फलों का हम अच्छी तरह से रसा स्वादन करेंगे तो साल भर के लिए विटामिन ए की हम पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन ए हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी है और ये भी देखा गया है कि एक ही सीजन में, एक गर्मी के मौसम में जब हमारा आम उपलब्ध होता है तो हम लोग जब आम खाते हैं तो सारे साल भर की जो विटामिन ए की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हमारे शरीर में उसका संचय हो जाता है और हमको किसी प्रकार से भी बाद में विटामिन ए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, जो हमारा सुखाया हुआ आम होता है, सुखाए हुए आम जिसको आमरस भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड होता है जिससे कि हमको विटामिन ए मिलता है। इस विटामिन ए का जो की मात्रा जो होती है आम में वो बहुत अधिक होती है और कभी कभी 1000 से लेकर 6000 इंटरनेशनल यूनिट तक होती है, इसलिए आम को एक प्रचुर विटामिन ए का स्रोत माना गया। साथ ही साथ ये चूंकि कैरोटीनॉइड के रूप में होता है, बीटा कैरोटीनॉइड जो देखते हैं पीलापन आम के गुदे के अंदर होता है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसका कारण है कि इसके अंदर मैंगो के अंदर एक और कंपाउंड होता है प्लास्टोग्लोब्यूल, जिसकी वजह से हमको ये पचता भी है। नहीं तो बहुत से फलों और सब्जियों में विटामिन ए होता है लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता है, हमको मिलता नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आम का फल जो है उसके अंदर फैट नहीं है। आमतौर पे लोग कहते हैं फैट फ्री होना चाहिए हमारी डाइट, मोटापा बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जितने भी लोग हैं जिनको ये आशंका है कि मोटे हो जाएंगे उनके लिए फैट फ्री है। इसी के साथ बहुत सारे इसमें खनिज भी हैं, हमारे न्यूट्रिएंट हैं, कैल्शियम भी है, बहुत सारे विटामिन हैं। ये इसको मैं कहूंगा कि एक बहुत भरपूर अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत ही चुना हुआ फल है जिसकी हम पूरे विश्व भर में ख्याति है और सब लोग इसको आज मानते हैं कि इसका उपयोग अधिक से अधिक आम के सीजन में अपने स्वास्थ्यकारी जीवन के लिए करना चाहिए।
0: राजन जी, कच्चा आम और पका आम में से शरीर पर ज्यादा लाभकारी कौन से आम है और ओकर उपयोग हमला कैसे करना चाहिए?
1: आप देखते हैं आम के फल पकने से पहले भी गिर जाते हैं और बिना पके फल छोटे आकार में जब होते हैं, हरे होते हैं, कच्चे होते हैं तो गिरते हैं। गांव में उनका उपयोग चटनी बनाने में किया जाता है, उसको जो है बहुत से लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग उसका पन्ना बनाते हैं, कुछ हम अमचूर बनाते हैं, कुछ उसके खटाई जिसको अमचूर कहते हैं, उसके अलावा कुछ लोग उसकी विभिन्न प्रकार के अचार भी बनाते हैं। तो इस तरह से आम का प्रयोग शुरू से हो जाता है और लोग आमतौर से सोचते हैं कि पका हुआ ही आम जो है उसके लिए ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, परंतु ऐसा नहीं है। आम का जो कच्चा फल है उसके अंदर भी बहुत से पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। आप देखेंगे अंदर इसके कंपाउंड होता है मैंगीफेरिन। मैंगीफेरिन एक बड़ा ही ऐसा कंपाउंड है जिसको वैज्ञानिकों ने जाना है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक एंटी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर को रोकता है, एंटी डायबिटिक है, बहुत सारे इसके अंदर गुण है। उसके अलावा बहुत से औषधि पाए जाते हैं जो कंपाउंड ये कच्चे आम में ज्यादा होते हैं, छिलके में ज्यादा होते हैं। आम के गूदे में तो होते हैं लेकिन छिलके और कच्चे आम में इनको ज्यादा मिलते हैं और हम लोग आम के विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। पके आम से हम उसका जो गूदा निकालते हैं उसके स्क्वैश बनाते हैं, तरह तरह के पेय पदार्थ बनाते हैं, उसका मैंगो लेदर आमरस और आम के कई तरह के मैंगो फ्रूट बार उसको कैनिंग भी करते हैं। कई लोग तो इसको फ्रोजन मैंगो स्लाइस भी रख रहे हैं, उसको कम टेम्परेचर पे भी रख दे रहे हैं। कई तरह के पदार्थ बनते हैं और इसके साथ ही इसकी खीर बनती है। तरह तरह से हम लोग के स्वास्थ्य में ये वर्धन करने के लिए इसका उपयोग होता है। कच्चे आम का पन्ना, कच्चे आम का अमचूर, चटनी, ये सब भी आम के लिए बहुत आम आदमी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है।
0: राजन जी, जैसे आप मन अभी बता रहे हो कि कच्चा आम हमारे स्वास्थ्य पर बहुत लाभकारी है, कच्चा आमला का हमला छिलका से ही तो उपयोग करना चाहिए? ओला
1: आम के छिलके में गूदे से भी ज्यादा पौष्टिकता पाई जाती है जी। उसके अंदर जो मैंने बताया मैंगीफेरिन और

0: अधिक और यौगिक जो है वो छिलके में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और यदि आप देखेंगे तो पुराने जमाने में छिलके से ही तजार बनाए जाते थे, छिलके से ही बहुत व्यंजन बनाए जाते थे। छिलका एक हमारे जो भी पदार्थ बनाते हैं, हम हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी पौष्टिकता को और बढ़ा देता है। कभी कभी लोगों के अंदर आता है दिमाग में कि स्वाद देर से खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कैरोटीनॉइड भी ज्यादा होते हैं, मैंगो के छिलके में बहुत सारे जो विटामिन के अलावा फिनोलिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा सर, कच्चा आम छिलका से ही खाना चाहिए का, पका आम ला घलो छिलका से ही खा सकते?
0: पके आम के छिलके में भी बहुत सारे गुण हैं, अगर पके आम का भी छिलका आप उपयोग में ला सकते हैं तो इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य में। और इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि छिलके में ज्यादा होते हैं गूदे के मुकाबले, जो स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक।
1: मगर सर, अभी आजकल जो बाजार में केमिकल से पके वाले आम मिलते, तो वो आमला का छिलका से ही खाना अच्छा रही?
0: इसके लिए किसान भाइयों या जितने भी लोग आम का उपयोग करते हैं उनको एक सावधानी रखनी चाहिए। आम जो केमिकल से कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, उसमें कभी कभी उसके ऊपर जो है आटे की तरह पाउडर जैसा आ जाता है, जो कैल्शियम कार्बाइड के अवशेष होते हैं, तो इसको पहले बहुत अच्छी तरह से धोएं। छिलके को उपयोग में लाना है तो आप नमक के पानी का घोल बना लें, 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उसमें आम को डुबो के रख दें, और कुछ देर बाद या उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उससे जो आम के फल होंगे उसमें से जो ऊपर सतह से जो विभिन्न प्रकार के केमिकल हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसको धोकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: राजन जी, बीमारी मन ले बचाव में आमा हा कौन ढंग ले लाभकारी है? अब का मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति या अन्य कोनो औ शारीरिक बीमारी ले पीड़ित व्यक्ति मन ला आम के सेवन करना चाहिए?
0: देखिए, पुराने जमाने में आम का प्रयोग बीमारियों से बचने के लिए तो किया जाता था, बीमार व्यक्तियों को भी दिया जाता था। आम की जो होती है छिलका, जो तने का छिलका होता है, छाल होती है, पत्तियां हैं और उसके साथ लकड़ी है, जड़ें हैं और फल, सभी हमारे को बीमारियों से बचाते हैं। इनमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब सूजन को कम करते हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कैंसर को भी रोकते हैं, एंटी ट्यूमर होते हैं, और बहुत से ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो एंटी एलर्जिक होते हैं, एलर्जी हमारी घटाते हैं, एंटी डायबिटिक होते हैं जिससे कि हमारी डायबिटीज कम होती है। जो आम में पत्तियों को, पहले आपने सुना होगा कि आम की 2 पत्ती पानी के गिलास में रख दी जाती थी, सुबह उसका पानी पी लिया जाता था, तो उससे एंटी डायबिटिक उसके गुण आते थे, वो मैंगीफेरिन के कारण है। और ये जो हमारी हड्डियों में कमजोरी होती है उसको, इसमें कफ को भी रोकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो गुण हैं उसके, हम लोग कितना उसका वर्णन करें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो लीवर है यकृत, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारा जो पेट होता है उसके अंदर जो उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ पाचन दुरुस्त रखते हैं, उनके भी ये जो है पॉपुलेशन को बढ़ाता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। अगर आप देखेंगे मैंगो का पल्प जो होता है, उसका गूदा होता है, तो उसके अंदर मैंगीफेरिन बहुत पाया जाता है, गैलोटेनिन, क्वर्सिटिन, क्वर्सिटिन भी एंटी कार्सिनोजेनिक है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, एलर्जिक एसिड भी होता है
1: जी।
0: और इसके साथ ही छिलके को आप देखते हैं तो उसमें भी मैंगीफेरिन, ये सब का बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये मधुमेह में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंगो के अंदर एक वो पाया जाता है कंपाउंड, जो मैंने पहले भी बताया, मैंगीफेरिन। और इसके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वास्थ्यकारी हैं और मधुमेह को कम करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक एसिड जो है वो अन्य हम जो खाते हैं उससे कम होता है, जैसे हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इनसे ग्लाइसेमिक एसिड बहुत कम है। चावल और आलू का लगभग 70 होगा तो इसका 50 से 60 होता है। इसको मध्यम ग्लाइसेमिक एसिड के श्रेणी में रखते हैं, और इसको इससे ज्यादा संभावना नहीं होती है, लेकिन कम ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा आम उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको मधुमेह है, डायबिटीज है, परंतु कम मात्रा में इसका प्रयोग जो है बहुत ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। दूसरी मैंने एक और चीज बताई थी, रोज आम के पत्तों को अगर पानी के गिलास में रात को रख दें और सुबह पी लें तो उससे भी मधुमेह का हम जो है निजात पाते हैं। ये भी पाया गया, जो इसका आटा होता है आम के गुठली का, उसका भी प्रयोग किया करते हैं लोग, और उसके अंदर भी गुण पाए जाते हैं, मधुमेह से हमको बचाता है।
1: डॉक्टर राजन जी, लइका मन पर आम हा कैसे लाभकारी है?
0: उनके लिए सबसे बढ़िया चीज तो है, आजकल बहुत सारे बच्चों के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, जिसको बेबी फूड कहते हैं, तो उनको दूध के साथ मिला के खिला सकते हैं, दही के साथ मिला के खिला सकते हैं, तो उससे उनको विटामिन ए मिलेगा, कैरोटीनॉइड मिलेगा, और ये सुपाच्य है, उनके पेट का जो है जो प्रणाली है, जो पाचन प्रणाली है वो अच्छी होगी। साथ ही साथ न्यूट्रिटिव है, क्योंकि इसमें विभिन्न कंपाउंड है, विटामिन है, उनको स्वास्थ्य वर्धन होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इससे उनके अंदर प्रतिरोधता बढ़ती है, इम्यूनिटी आती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही

0: सरकारी है, तो उनको दूध के साथ मिला के दे सकते हैं, दही के साथ मिला के दे सकते हैं, और आम के बहुत सारे ऐसे व्यंजन बना सकते हैं। साथ ही साथ गाँव में जहाँ पर बहुत सारे चूस आम गिर जाते हैं, पक्के गिर जाते हैं, जिसमें से हम गूदा निकाल सकते हैं, उस गूदे का प्रयोग करके उनको हम रोटी के साथ खाने को दे सकते हैं, चावल के साथ खाने को दे सकते हैं। आदिवासी परंपरा ऐसी रही है और उनको यदि इसका उपयोग करेंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: डॉक्टर राजन जी, आम ला फलों के राजा कहे जाते हैं, एकर पीछे कारण का है?
0: आम का फलों का राजा इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर स्वाद है, एक अद्भुत स्वाद है, तरह तरह के अरोमा है, तरह तरह की खुशबू है, आकार तरह तरह का है, अलग अलग रंग है, और साथ ही साथ खाने के अलावा ये विटामिन ए में और बी में बहुत ही भरपूर है, बहुत सारे इसके मेडिसिनल क्वालिटी भी है, तो इन सब कारणों से इसको फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल जो है एक समृद्ध सोर्स है, ये समृद्ध स्रोत है हमारे उन पदार्थों का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और देखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा, इन तीनों कारणों से इसको फलों का राजा कहा जाता है। और आम हिंदुस्तान में आम कहा जाता था इसलिए क्योंकि आम फलता सबको मिल जाता था, तो आम आम ही नहीं खास भी है, अपने गुणों की वजह से खास है, अपने गुणों की वजह से खास है, इसलिए इसको फलों का राजा कहा जाता है।
1: डॉक्टर राजन जी, एक आखिरी प्रश्न है, आम की आम गुठलियों के दाम बहुत प्रचलित है, ऐसा कहने का कारण क्या है?
0: इसको कहने का बहुत सटीक उदाहरण ये है कि आम से तो पैसा का लोग कमाते ही हैं, गुठलियों से भी कमाते हैं, गुठलियों से बहुत सारे पदार्थ भी बनते हैं, इसके अंदर तेल होता है करीब 10%, उस तेल का बहुत अच्छा दाम मार्केट में मिलता है क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स में प्रयोग में लाया जाता है, औषधि गुण होते हैं इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसका उपयोग करती है, उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है 6%, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। आप देखते होंगे इसका जो तेल से जो निकाल जाता है, जो इसका बनता है बटर
1: जी,
0: वो कोका बटर के बराबर वो उपयोगी होता है, उसके अंदर भी इतने ही अच्छे गुण होते हैं, इसलिए इसका जो तेल है वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे लोग इसके गुठलियों को बोकर पौधे बना रहे हैं और पौधे बनाकर पौधे बेच रहे हैं, पेड़ ग्राफ्ट करके कलम बनाकर जो बीजू पौधे होते हैं उसी पे कलम बनाई जाती है, तो नर्सरी उद्योग जो है उसी का उपयोग कर रहे हैं। इसके छिलके से भी, आम की गुठली के छिलके से भी बहुत सारी चीजें लोगों ने बनानी शुरू कर दी है, तो आम की फलों में गूदे में तो बहुत सारे गुण हैं ही, उसका उपयोग है ही, साथ ही साथ गुठली के भी बहुत आर्थिक महत्व है, इसलिए लोग उसका उपयोग करते हैं। उसका सबसे अच्छा एक उपयोग तेल के लिए है, साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया आम के गुठली का आटा हमारे डायबिटीज को भी कम करता है, और बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जहां आम होता है दूसरी फसलें नहीं होती हैं, उसके गुठली को सुखाकर लोग रख लेते हैं, उसका आटा बनाकर उस समय उपयोग में लाते हैं जब खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे भी आदिवासी क्षेत्र थे हिंदुस्तान में जहां पर उसका उपयोग किया जाता था, और जब अनाज नहीं होता था तो गुठलियों से बनाए गए आटे का उपयोग किया जाता था, जो कि उनको जो उपयोग करता थे उनके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अच्छा था बल्कि उनकी भूख भी मिटाता था।
1: डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी, आप मन्हा हमर श्रोता मल्ला आम के हमर शरीर बर पोषण के संबंध में अतेक सुघर बड़ महत्वपूर्ण जानकारी दे हो, समय दे हो, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।

नवा बिहान कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे आम के फल से शरीर का पोषण विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र राजन, पूर्व निदेशक केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से नेमी चंद साहू की बातचीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे हैं गोविंद मुनीस ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

0: बंदू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पिघलता आसमान, लीजिए सुनते इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे हैं इंदिवर ने और तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए अब सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत। आवाजें हैं साधना सरगम और मनहर की, और ये गीत हमने लिया है फिल्म जुर्म से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं चंद्रकांत गंधर्व। इनसे पहले सुनते हैं शमीम जयपुरी की लिखी ये गजल।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज यानी 29 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज 11:30 से 12:00 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: चंद्रकांत गंधर्व के स्वर में आइए अब सुनते हैं ये गजल। शायर हैं दाग दहलवी।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे चंद्रकांत गंधर्व। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की

संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए के अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के जरिए देश में अपनी नई पहचान बनाएगा। रायपुर में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपात, जंगल और आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बैठक में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। कंपनियों के अनुसार मई 2026 में राज्य में पेट्रोल की खुदरा बिक्री में 8% और डीजल की बिक्री में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। डीजल की मांग बढ़ने का मुख्य कारण कृषि गतिविधियां बताई गई हैं। तेल कंपनियों ने कहा है कि राज्य भर में पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रूप से उपलब्ध है और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। लोगों से ये अपील की गई है कि वे घबराहट में अनावश्यक खरीदारी ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का सुनहरा अवसर मिला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देश भर के अपने 20 मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए 700 सीटें आरक्षित की हैं। इन सीटों पर प्रवेश नीट UG परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। सुशासन तिहार 2026 के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के भंसूला में कल जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने महिला स्वसहायता समूह के उत्पादों के लिए मोहला ब्रांड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासन की पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं तक का लाभ पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं अमान अली बंगश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमान अली बंगश का सरोद पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज यानी 29 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं भूमि फिल्म के इस गीत के साथ। स्वर है राहत फतेह अली खां का, बोल लिखे हैं प्रिया सरैया ने और संगीत है सचिन जिगर का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में

राहत फतेह अली खां और असीस कौर के स्वर में आइए अब सुनते हैं सिम्बा फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और तर्ज बनाई है तनिष्क बागची ने।

राशिद अली और श्रेया घोषाल और टिम्मी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म एक दीवाना था का ये गीत। बोल जावेद अख्तर के थे और धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। आइए अब सुनते हैं कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान के स्वर में समीर का लिखा है गीत। संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है भागम भाग।

0: इसी गीत के साथ चित्रवर संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य असौभ्य कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना

0: आलोचना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। अनुराग धारा कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी। इनसे पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुराग धारा में कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी।

अनुराग धारा कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार थे गणेश पंडित और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है चित्रगुप्त का और फिल्म का नाम है परदेसी।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा है गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है राखी और हथकड़ी।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आपके दीवाने, आइए सुनते इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के स्वर में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केंद्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद किए हैं। इस दौरान बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेश डेका करेंगे।

0: वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, बिहार, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारईकाल, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच आज से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के हटरी बाजार स्थित एक कपड़े और मोबाइल की दुकान में बीती रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान अचानक उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में नगर सेना का एक जवान घायल हो गया है। भिलाई के कोका स्थित मनसा कॉलेज में कल 30 मई से योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी रामार्थ देव शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सेंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है इसी प्रकार से

0: रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे

0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता।
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना।
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम वान्या और मनन।

0: गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस।

0: लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की

0: टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली!
1: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत

0: की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं आशा भोसले। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं आशा भोसले। हम सुन रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत और संगीत लेज़ली लेविस का। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में एक और गीत जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री

0: सिद्धारमैया ने कल लोक भवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: Akashwadi at 90.
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है फर्ज़।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। बैराग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओ, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और कार्यक्रम करेंट अफेयर्स आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यूनुस हुसैन खां का गाया राग बिहागड़ा में ख्याल सुनिएगा रात 10:00। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे चंद्रकांत गंधर्व।

अभी 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग भटियार में ख्याल गायन। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनिएगा 5:00 और 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा छोटी शुरुआत बड़ी जीत। क्रम 1 मुलाकात में होगी भेंटवार्ता रंगमंच और अभिनय से जुड़े अभिनेता वाराणसी के श्री अमितेश तिवारी से बातचीत। और सुनिए कार्यक्रम अपनी पसंद।

शाम 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खेती में ड्रोन अपनावन लागत घटावन। सुनिएगा क्रम हेलो चौपाल में भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव, इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर, संचालन राजेश यादव का, और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन पर दी गई जानकारी। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम में यादें सुनिएगा 10:30 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा 2:00 PM, 2:30 PM, 7:00 PM, 8:00 PM और 9:15 PM पर। श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, 7:21 पर किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा खेती में ड्रोन अपनावो लागत घटावो। सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल, इसमें भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव, इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर, संचालन राजेश यादव का, और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विदुषी लक्ष्मी शंकर। इनसे सुनिए राग भटियार में विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं करो कृपा मोहे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं पिया तोरे कारण। तबले पर संगति इस्माइल दद्दू खां, हारमोनियम पर संगतकार हैं मोहन मोंगरे। तो आइए सुनते हैं विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग भटियार में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग भटियार में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगतकार थे इस्माइल दद्दुखा और हारमोनियम पर थे मोहन मोंगरे। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में। निखत खान का लिखा यह गीत है, संगीत ललित पंडित का है और फिल्म का नाम है बेशरम।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए पहली फिल्म का गीत। एमएम क्रीम, सोनू निगम और श्रुति साडोरीकर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, संगीत एमएम क्रीम का है।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गीत है, संगीत अजय अतुल का है।

0: सोनू निगम और नीति मोहन के गाए ब्रदर्स फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को

0: शिया माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं, मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई

0: 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ। संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, और फिल्म का नाम है पतिता।

0: सेहरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत रामलाल का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादे,
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

लीजिए अब सुनिए झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है वसंत देसाई ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास की रचना। संगीत वसंत देसाई का है और फिल्म का नाम है गूंज उठी।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो, फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म माया के लिए आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थीं। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है उजाला।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे के गाए फिल्म उजाला के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
2: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और मन भावन में आपके साथ हूं मैं आपकी हमसफर हेमा। दोस्तों, हम चाहे कितने भी सामर्थ्यवान हो, यानी कितने भी सक्षम हो, केपेबल हो, बावजूद उसके जब कोई और हमारी कोई इच्छा पूरी करता है, हमारे लिए कुछ करता है, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है ना। बड़ा ही खूबसूरत सा एहसास वो होता है और ये एहसास हमेशा हमारे साथ भी रहता है। और जब कभी भी उस बात को हम फ्यूचर में याद भी करते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। उस शख्स को याद कर जैसे जीवन भी हमें सार्थक सा लगता है ना। शायद इसीलिए भी इस प्रोग्राम का इंतज़ार आपको और हमें दोनों को रहता है, क्योंकि आप हमसे कुछ कहते हैं और हम उस बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता और पुख्ता होता रहता है। तो मन भावन में आज भी आपकी फरमाइश का बहुत बहुत स्वागत है, जिसे पूरा करने के लिए एफएम गोल्ड इस वक्त बिल्कुल तैयार है शाम 4 बजे तक। तो अपने पसंदीदा गीत के बोल लिखिए फिल्म के नाम के साथ, और कुछ आप लिखना चाहें उस गीत से जुड़ा वो भी बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ईमेल कीजिए हमें अपनी फरमाइश, ईमेल आईडी है हमारा, नोट करें, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868686853।

ये वादा रहा कि जितने प्रोग्राम में हम गीत शामिल कर पाएंगे उतने करेंगे, तो आपके मैसेजेस आ रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चाहे तो हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, fmgold@delhi@gmail.com। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और किसी एक फरमाइश के साथ हाजिर होते हैं।

दोपहर के 3:18 और प्रोग्राम मन भावन आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और फरमाइश हम तक बहुत सारी पहुंच रही हैं। कुछ नाम हैं जो ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे लिसनर्स, सतीश अनेजा, स्वरूप आनंद सरजल, तुलसी मस्कीन, कमलकांत गुप्ता, रिजवान खान, जय निसार अली, अनिल कुमार गोहांकर और

आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ही आप मेल भेजें, क्योंकि आप बार बार जब भेजते हैं कई सारी मेल्स तो उसमें किसी और की स्किप भी हो सकती है और वो आपकी भी हो सकती है, तो एक मेल भेजें हमें और आपका मैसेज हमें मिलेगा तो ज़रूर पढ़ेंगे उसको। अब गीत प्ले करते हैं अगला, और बड़ी ही प्यारी फरमाइश है ये फिल्म जो है, उस फिल्म में भी जीनत अमान थी। देखिए अभी आपने गीत सुना था प्रोफेसर प्यारेलाल से, इसमें धर्मेंद्र के साथ थी जीनत अमान, और अब जो फिल्म है हीरा पन्ना, इसमें भी ये जो गीत फिल्माया गया है इसमें है जीनत अमान, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और आप कहें तो 70s, 80s, 90s की सदाबहार अभिनेत्री। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा का ये मैसेज है चंडीगढ़ सिटी से, और कहते हैं कि वेलकम टू द प्रोग्राम, नमस्कार सिस्टर, नमस्कार आपको दोनों को भी, और कहते हैं कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसकी मैं सराहना करता हूँ और प्रोग्राम को वो और खूबसूरत बनाता है, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लीजिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बंधावन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पटेल जिनका मैसेज आया है हमें ईमेल हम तक पहुंची है सुरसंगम हरजिंदर सिंह भाटिया ताज मोहम्मद हरजिंदर शिंदा प्रवीण रनपारा सतीश अनेजा और जॉन डी कैस्ट्रो राधेश्याम शर्मा मोहम्मद फरमान मसरूर हसन स्वर्ण सिंह शमशुल कुमार राही और ये अगला मैसेज है गुरमीत सिंह का बोधराज खुरवाल जगन्नाथ पटेल शाहजी भोदके किशन वंजानी सभी के मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं इसलिए नाम ढूंढना मुश्किल हो रहा है आफताब अंसारी का मैसेज भी हमें मिला है और भूषण खेरा हमारे साथ हैं वीरा मस्कीन का भी मैसेज हम तक पहुंचा है दीपेश वर्मा और ये अगली ईमेल है नवी हसन की सुधाकर जाधव रुपेश संघाई और विजय सुरलकर और नीता का रोहिणी से मैसेज है कुमार सानू की आवाज में प्यारा सा गीत फिल्म परदेस से आपने सुनना चाहा है जरूर सुनिए लीजिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूँ। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोपहर के 3:38 हो चुके हैं और आप शाम 4 बजे तक रहेंगे हमारे साथ एफएम गोल्ड पर मन भावन प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आपके हमसफर हूं मैं आपके साथ हेमा खन्ना। और अगली फरमाइश या बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये भी आप जानते हैं, है ना, सहमत हैं कि कितने ही गीत हम एक घंटे में 50 मिनट में आपको सुनवा सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। और ये फरमाइश भी बहुत दूर से आई है, कहाँ से, राजस्थान से, पहचान गए होंगे, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार की ये फरमाइश है। और इनके साथ हमें सुन रहे हैं डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श। और ये गीत आ रहा है किशोर कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी लीना चंद्रवर्कर की आवाज़ भी है, फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे, मंचली।
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
3: अच्छा जी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड वन भावन में आपके गीत शामिल हैं जो आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जिनकी फरमाइश करते हैं, और इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं उनके नाम भी लेने बहुत ज़रूरी है। राशिद हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं, अनंत वाधे भी सुन रहे हैं एफएम गोल्ड, मनोहर लाल गांधी हैं, रविंद्र मोहन दास, जसबीर सिंह, हीराबन शिंदे, दिग्दर्शन गौड़ और बहुत सारे ईमेल्स आए हैं एक नाम से। देखिए, मैं आप फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी कि आप सिर्फ एक ही ईमेल भेजें। इस बार शामिल कर रही हूं, लेकिन अगर आपने अगली बार भी इसी तरह किया यानी ढेर सारी ईमेल्स, तो फिर मुश्किल होगा आपका आपकी फरमाइश को शामिल करना। खैर, शामिल करते हैं इस बार, नई दिल्ली से हैं ये, और एक ऐसी गीत की फरमाइश इन्होंने की है जो जब रिलीज हुआ था ये गीत तो हर किसी की जुबान पर था। संगीत ही ऐसा था, आर डी बर्मन साहब का, पिक्चराइजेशन थी मनीषा कोइराला पर, और आवाज थी पुरसोज कुमार सानू की। 1942 अ लव स्टोरी, ये गीत कौन सा होगा आप जानते हैं, और फरमाइश यानी जिनकी वजह से हम ये गीत सुन रहे हैं वो है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, नई दिल्ली से। आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और अब अपनी मंजिल के करीब है। कुछ ही मिनट हमारे पास हैं और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमारे साथ हैं उनके नाम शामिल करते हैं। संजय ढींगिया हमें सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, आर्यन वर्मा, ताज मोहम्मद, शेख मूसा, हरजिंदर शिंदा और फारूक अली खान, जगन्नाथ पटेल के अलावा अकरम हुसैन प्रिंस का मैसेज भी हम तक पहुंचा है और सोनम के अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, राम कुमार रेवाड़, पुरुषोत्तम सिंह, बोधराज खोरवाल, प्लीज एक ही मैसेज भेजें, अब्दुल गफार, एस एम जावेद, रश्मि पांड्या, जय अब्बासी और मैसेजेस रिपीटेड हैं बहुत सारे। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और दिग्दर्शन गौड़, तो अगले मैसेज की तरफ पढ़ते हैं और यह है सुधाकर जाधव, शमशुल कुमार राही, नवी हसन, आफताब अंसारी, आर कुमार, विजय बिहारी शर्मा, हीरामन शिंदे और सुरेश नारंग का मैसेज भी हम तक पहुंचा है। अशोक वर्मा जी प्लीज एक ही मैसेज भेजा कीजिए, सुनील गायकवाड़ और चलते हैं आगे, राधेश्याम दीवानगन, धर्मेंद्र छीपा और ये हैं नाम इनका क्लियर नहीं है। इनका मैसेज है उदय भान पाल, इतरीस सैफी।

0: संदीप मक्कड़, अब्बासी, रमेश चंद्र कामड़े और हीरामन जी का पहले ले चुकी हूँ मैं मैसेज, मास्टर खिल्लू परवेज नासिर शेख। तो उम्मीद है मैंने मैसेजेस सब पढ़ दिए हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आई है, ये गीत बहुत कम प्ले होता है आकाशवाणी पर या फिर एफएम पर, और ये जो फरमाइश ऐसे करने वाले हैं बघेरा दुर्ग से हमारे लिसनर्स जो हैं संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। फिल्म अलग अलग का ये बहुत ही प्यारा सा गीत है हमारी लता जी की आवाज़ में, सुनते हैं इसे और उन्हें भी याद करते हैं।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

मन भावन में आप सब हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हेमा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलूंगे इस प्रोग्राम के बाद जो समाचार होंगे उसके बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा के दौरान आज श्री सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
1: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर, और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा। और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: positions for deputation posts, including Senior Administrative Officer, Junior Translation Officer, and Personnel Executive. The vacancies are in various pay levels as per the 7 CPC. The revised last date for receipt of applications through proper channel is 8th June 2026. Detailed eligibility conditions, prescribed application format, and the other terms are available on the NHB website under the Tenders and Vacancies section. Do refer to the official website, that is at www.nhb.gov.in. Kandla Special Economic Zone has invited applications for the post of an appraising officer, Group P, gazetted on deputation basis at Gandhidham. Two tentative vacancies are available in Level 8 as per the 7 CPC. Eligible officers of the Central Board of Indirect Taxes and Customs with experience in customs, central excise or GST work may apply. Applications along with RPARS, vigilance clearance, integrity certificate and other required documents must be forwarded through proper channel within 60 days from the date of advertisement in the Employment News. Detailed information is available on the official website, that is at www.kases.gov.in. I repeat, the website is www.kases.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद नाम है सहायक प्रोफेसर, पदों की संख्या 6 है, जिनमें से 3 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार विस्तृत विवरण देखने के लिए देख सकते हैं वेबसाइट apply.nibmg.ac.in। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं 2026facultyrecruitment@nibmg.ac.in। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या MS 54 के अनुसार विश्वविद्यालय में 523 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जारी और दिनांक 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित शिक्षक भर्ती अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं। 2023 की अधिसूचनाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क की वापसी संबंधी जानकारी के लिए ये सलाह दी जा सकती है कि वे विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट को देख सकते हैं www.andhrayuniversity.edu.in। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।

0: के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम परिक्रमा में। आप सभी का स्वागत एक और अंक में, हार्दिक अभिनंदन भी आप सभी का। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज उनके पास कौन कौन सी खास रिपोर्ट्स हैं, और खेल के मैदान की गतिविधियों की भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी हमारी नज़र रहेगी। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन का हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: वेल हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, दिस इज शगुन चोपड़ा विद विशाल शर्मा टुडे एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम एंड बोथ ऑफ अस वी आर रेडी एंड वी आर थ्रिल्ड एंड वेरी मच एक्साइटेड टू बिगिन आवर प्रोग्राम। एंड विशाल टोल्ड यू अबाउट द होल प्रोग्राम, द सेगमेंट्स एंड एवरीथिंग। वी हैव टू टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर डिस्कशन सेगमेंट व्हिच इज डेटलाइन इंडिया एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी टोल्ड यू दिस विल बी ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट कीप लिसनिंग टू अस। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
1: जी, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
2: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एग्जामिनेशन माफियाज एंड प्रोटेक्शन फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स।
1: पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, योजना के अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए।
2: IMD predicts below normal monsoon rainfall over country and above normal heat wave conditions in several states during June.
1: हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।
2: So now this is our segment Dateline India. Let's begin by discussing the first topic, that is International Everest Day. Well, today it's actually a very special day for all adventure lovers and dream chasers out there because...
1: जी, आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है, जैसे कि शगुन ने आपको बताया, और हर साल 29 मई को पूरी दुनिया इस दिवस को मनाती है। ये दिन साहस, दृढ़ संकल्प और खोज की अद्भुत भावना को समर्पित है।
2: Very true. When we hear the word Everest, we instantly think of snow-covered peaks, well, freezing winds and one giant challenge standing tall above the clouds.
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 1953 में दो महान पर्वतारोहियों न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर की गई पहली ऐतिहासिक सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है।
2: So the recognition of Everest as the highest mountain, it came in the mid-19th century. In 1856, the Great Trigonometrical Survey of India established its height and named it Peak 15. So later, in 1865, this peak was officially named Mount Everest in honor of Sir George Everest, a former Surveyor General of India. So this discovery marked a significant milestone in the field of geography as well as in the field of exploration.
1: शगुन ने ज्योग्राफी की बात करी तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की महालंगुर हिमाल उपश्रृंखला में स्थित है, जो नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर फैला हुआ है। नेपाल की ओर से शिखर तक पहुंचने के लिए दक्षिणी चढ़ाई मार्ग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये क्षेत्र अपने उबड़ खाबड़ भूभाग, शानदार चोटियों

0: और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है, और इसीलिए ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के लिए ये आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है।
1: Well, yes, I can visualize the whole scene, the mountainous terrain, and you can also imagine the determination that it must have taken Vishal. No advanced technology, no fancy gear like today, just courage, preparation and the will to reach the top of the world.
0: ये इच्छा शक्ति और साहस के बल पर ही और तैयारियों के बल पर ही और मेहनत करके ही माउंटेनियर्स वहाँ पहुँचते थे। तब इतनी हमारे पास, जैसे आपने भी कहा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और शगुन वो क्षण कितना अद्भुत होता होगा जब बेहद खराब मौसम और खतरनाक रास्तों से जूझने के बाद माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुँचने का अनुभव।
1: Oh wow. And Everest isn't just about mountains. It is actually a symbol of overcoming challenges in life as well,
0: जी.
1: right? Moving mountains as we say. And everyone has their own Everest to climb, right?
0: जी बिल्कुल, चाहे परीक्षा हो या करियर के लक्ष्य हो, फिटनेस का सफर हो या फिर निजी संघर्ष,

0: टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
1: ये इच्छा शक्ति और साहस के बल पर ही और तैयारियों के बल पर ही और मेहनत करके ही माउंटेनियर्स वहाँ पहुँचते थे। तब इतनी हमारे पास, जैसे आपने भी कहा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और शगुन, वो क्षण कितना अद्भुत होता होगा जब बेहद ख़राब मौसम और ख़तरनाक रास्तों से जूझने के बाद माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊँची पर्वत चोटी पर पहुँचने का अनुभव।
0: Oh wow. And Everest isn't just about mountains. It is actually a symbol of overcoming challenges in life as well,
1: जी.
0: right? Moving mountains as we say. And everyone has their own Everest to climb, right?
1: जी बिल्कुल, चाहे परीक्षा हो या करियर के लक्ष्य हो, फिटनेस का सफर हो या फिर निजी संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हमें याद दिलाता है कि लगन हमें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।
0: एंड आई एम इवन थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय ओन लाइफ एज वेल, व्हाइल वी आर प्रेजेंटिंग आवर प्रोग्राम एंड डिस्कसिंग अबाउट इट। एंड टुडे एक्चुअली ट्रेकर्स, क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स, एडवेंचर एंथुसियास्ट्स अक्रॉस द ग्लोब, दे सेलिब्रेट दिस इंस्पायरिंग अचीवमेंट and honor the spirit of exploration.
1: जी, और यहाँ एक मजेदार सवाल हमारे श्रोताओं से भी, और शगुन ये सवाल आपसे भी है कि अगर आप दुनिया के किसी पहाड़ पर चढ़ने की सोचती हैं तो कौन सा होता वो पहाड़?
0: Well, I actually already know mine, somewhere scenic, beautiful, that mountainous, rugged terrain. But maybe not too dangerous. Not too dangerous. I'm not that adventurous. I'd like to come back alive. Thank you very much.
1: एवरेस्ट यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो तापमान होता है वो जमाव बिंदु से भी काफी नीचे पहुंच जाता है और ऑक्सीजन का स्तर भी खतरनाक रूप से कम होता है, और हर कदम एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय इंसान की सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान लेता है।
0: It is, I can imagine the hard work and the courage which is involved here, and yet year after year adventurers, they continue to take on this challenge and they prove how powerful human determination truly is. We can move mountains then
1: to
0: reach the peaks.
1: जी, जी. तो हम क्या एक एक, एक पर्वत शिखर नहीं बल्कि उस निडर जज्बे का भी जश्न मना रहे हैं जो लोगों को बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है।
0: So to our listeners and everyone, happy International Everest Day. Keep climbing your own peaks and never ever, never ever stop believing in your journey. So now, should we move on? It's also International Day of UN Peacekeepers, very important global observance. The International Day of United Nations Peacekeepers, commemorated every year on 29th of May, today.
1: ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में शांति बनाए रखने के प्रयासों के दौरान अपनी जान गंवा दी, और साथ ही उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है जो साहस, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं।
0: So let's tell our listeners that the first UN peacekeeping force, the United Nations True Supervision Organization, began operations in the Middle East on this date, 29th of May. The year was 1948.
1: शांति स्थापना का भविष्य विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय यूएन पीसकीपर्स दिवस पिछले लगभग 8 दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालता है। ये अपने आप में एक अधिक समतापूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ, सस्टेनेबल दुनिया के निर्माण की दिशा में प्रगति और सामूहिक प्रयासों की भावना को भी समाहित करता है।
0: And Vishal, more than 68,000 civilians, military, police personnel serve in 11 UN peacekeeping missions, confronting increasingly complex and interconnected challenges shaped by a shifting geopolitical landscape, and they also have to keep sustainable development in mind. And despite the challenges, peacekeepers remain steadfast in their pursuit of peace.
1: बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति रक्षकों की अटूट सेवा और बलिदान के साथ साथ इस कार्य में सहयोग देने वाले समुदायों के जुझारूपन को भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। इसके अलावा ये उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को भी पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शांति स्थापना के इस महत्वपूर्ण कार्य में वर्ष 2024 में ही 57 सैनिकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।
0: So UN peacekeeper, the word itself

0: Yes, and we often imagine soldiers standing guard in conflict zones, right? This is what we can visualize easily. But UN peacekeepers, it is they do so much more than that.
1: जी, और वे नागरिकों की रक्षा करने, युद्ध से प्रभावित समुदायों को सहारा देने, मानवीय प्रयासों में सहायता करने और यहाँ तक कि संघर्ष के बाद देशों के पुनर्निर्माण में भी मदद करते हैं. शांति सैनिक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आशा की एक नई किरण बनकर पहुंचते हैं.
0: सो पीस कीपर्स कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड दे वर्क टुगेदर अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्लैग एंड दिस इज ट्रूली अ ग्लोबल एफर्ट फॉर पीस.
1: और हमारा देश भारत भी संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में बढ़ चढ़ कर शामिल होता रहा है. पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान सबसे अधिक रहा है. हजारों भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने दुनिया भर में चलाए गए अभियानों में असाधारण शौर्य के साथ अपनी सेवाएं दी हैं.
0: सो लेट्स ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स दैट two Indian peacekeepers, they will be honored posthumously by the United Nations for their ultimate sacrifice in the line of duty on the International Day of UN Peacekeepers today. Lance Havildar Harbhajan Singh, who served with the United Nations Organization Stabilization Mission in Congo, and Naib Subedar Sujit Kumar Pradhan, who was deployed with the UN mission in South Sudan, will be posthumously honored by the UN Secretary General Antonio Guterres with the prestigious Dag Hammarskjöld Medal for their sacrifice in the line of duty. So additionally, Mr. Guterres will present the 2025 Military Gender Advocate of the Year Award to Major Abhilasha Barak of India, who serves on the UN Interim Force in Lebanon, honoring her outreach efforts with women and girls during her deployment in the West Asian nation. It makes us proud, right?
1: जी, तो आइए हम सभी एक क्षण के लिए उन सभी साहसी व्यक्तियों का सम्मान करें जो शांति के झंडे तले मानवता की सेवा करना जारी रखे हुए हैं.
0: And let us remember, peace is not just the absence of war, it is the presence of compassion, unity and hope.
1: आइए एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें. और कार्यक्रम में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स उनके पास हैं. और इस कड़ी में सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं शगुना?
0: एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो टुडेज एडिशन ऑफ परिक्रमा हाईलाइट्स द रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ टू डॉटर्स ऑफ झारखंड हु हैव मेड द एंटायर नेशन प्राउड थ्रू देयर डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड एकेडमिक एक्सलेंस. Let's hear that in detail in this report.
2: In the recently declared CBSE and ISE Class 12 examination results, two meritorious students from Jharkhand secured the top rank at the national level and created history. First, let's talk about Shambhavi Tiwari from Jamshedpur. A bioscience student of Sacred Heart Convent School, Jamshedpur, Shambhavi scored a perfect 100% in the ISE Class 12 examination to emerge as a national topper. Staying completely away from social media and maintaining a focused routine, she now aspires to become a doctor and serve the underprivileged sections of society.
3: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. अच्छा रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था. मेनली मैं मेडिकल की तैयारी करती थी, मतलब नीट की, तो उसी तरह से मैंने पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो किया. 5-6 घंटे में पढ़ाई करती थी स्कूल के टाइम पे, वापस आके बुक्स वगैरह जो नोट्स है वो पढ़ती थी.
2: द सेलिब्रेशंस वर नॉट लिमिटेड टू जमशेदपुर अलोन एज रांची टू विटनेस्ड अ प्राउड मोमेंट. भव्या रंजन एन आर्ट स्टूडेंट ऑफ Oxford Public School Ranchi secured 499 out of 500 marks in the CBSE Class 12 examination. With an outstanding score of 99.8%, Bhavya became a national topper and now dreams of joining the civil services to contribute towards nation building and public service.
4: National topper मैंने कभी नहीं सोचा था. काफी खुशी हो रही है, बहुत proud moment है मेरे लिए, मेरे parents के लिए, everyone involved in this journey. Hard work करना चाहिए, अपने efforts को कभी vain में नहीं जाने देना and सबसे ज़्यादा important है अपने आप में believe करना. They have to dream. आप ड्रीम करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे. ग्रेजुएशन में मैं हिस्ट्री लेना चाहती हूँ एंड मेरा टारगेट है कि मैं यूपीएससी सीएससी क्रैक करूँ.
2: Shambhavi and Bhavya have emerged as inspiring role models for students across the country. Their achievements reaffirm that sincerity, determination and hard work can turn even the biggest dreams into reality. For Parikrama, this is Mahvish Rahman from Ranchi.
1: झारखंड के बाद अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और यहाँ एक बहुत ही अनूठी पहल की जा रही है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में

0: आपदा प्रबंधन में मदद के लिए पहली बार ट्रांसजेंडर्स का एक दल प्रशिक्षित किया जा रहा है। मॉनसून के मद्देनजर तैयार की जा रही ये टीम शायद देश में अपनी किस्म की पहली टीम होगी। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि ये दल किसी भी आपत्ति के समय मदद के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता।
1: इस टीम में 10 ट्रांसजेंडर सदस्य शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैत्री संगठन की मयूरी अलवेकर, शिवानी गजबर, जोया दिनी आदि शामिल हैं। इन सभी को राजाराम झील में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें मोटर बोट चलाना, डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना, प्रभावित व्यक्ति को होश में लाना और फर्स्ट एड देना सिखाया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौड़ और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर प्रसाद संगपाल के मार्गदर्शन में देश स्तर पर यह अपनी तरह का पहला ऐसा नवीनतम प्रयोग है। जिला आपदा प्रबंधन के हिस्से के रूप में उनकी टीम बनाई गई है और इस टीम की ट्रेनिंग अभी चल रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रसाद संगपाल ने कहा कि ये देश में ट्रांसजेंडर्स की पहली ऐसी टीम है। कोल्हापुर जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 2500 युवाओं की एक टीम तैयार की है। इनमें 500 से ज्यादा युवतियां हैं। ये जवान लड़के लड़कियां बाढ़, तूफान, हादसा और अलग अलग आपदाओं या जरूरत के दूसरे हालात में मदद के लिए आते हैं। ये टीम बिना किसी मानदेय या तनख्वाह के काम कर रही है। अब कोल्हापुर में इस काम के लिए ट्रांसजेंडर की एक टीम भी तैयार की गई है। प्रसाद सपकार ने कहा कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये टीम काम करने लगेगी। कोल्हापुर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय राठौड़ ने बताया कि मानसून से पहले की तैयारियों के तहत वॉलंटियर्स को मुश्किल समय में बचाव का काम करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कोल्हापुर जिले में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, इसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह पहली बार 10 ट्रांसजेंडर्स की एक टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी भी आपदा में वे राहत के काम में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। ये प्रशासन की मदद करने वाली पहली ऐसी टीम है और उन्होंने किसी भी आपदा की स्थिति में मदद करने का पक्का इरादा कर लिया है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
2: So the central government has announced major railway infrastructure initiatives for Andhra Pradesh, including the commencement of operations of the South Coastal Railway Zone from 1st of next month. A report.
3: The new railway zone, headquartered at Visakhapatnam, will begin functioning from June 1st. The Government of India has already issued the gazette notification for the South Coastal Railway Zone, fulfilling a long-pending demand of the state. Speaking at an event in Visakhapatnam recently, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav said the new railway zone will strengthen railway administration and improve railway services in Andhra Pradesh. He said the centre has allocated a record railway budget of more than 10,000 crore rupees to the state. Railway projects worth nearly 1,06,000 crore rupees are currently under implementation to improve connectivity to ports, tourism centres and major cities.
4: Andhra Pradesh has 1,06,000 crore worth of railway project. We are reconstructing fully Navanirman 74 stations in Andhra Pradesh, and Andhra is 100% electrified. South Coast Railway Zone. This entire process is now completed. Creating a new railway zone is highly technical in nature. And now we are ready to notify the new railway zone on 1st of June 2026.
3: As part of railway modernization, 74 railway stations in Andhra Pradesh are being redeveloped with improved passenger facilities. Several flyovers, underpasses and railway tracks have already been completed, while many more infrastructure projects are under progress. The East Coast Railway Corridor is also being upgraded into a four-lane network to enhance passenger and cargo movement. The Railways Minister said these initiatives are aimed at strengthening railway infrastructure and supporting economic growth in Andhra Pradesh. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News.
0: और अब बात खेलों की। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता है। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली पिछले 25 वर्षों में वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक अपने नाम किया। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब हासिल किया।
2: In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in the qualifier 2 match in New Chandigarh at 7:30 p.m. Now, in some business news, benchmark domestic equity indices share

0: आवाज, रूप, दार, भाव, भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार आवाज के स्वामी पृथ्वीराज कपूर ने सिनेमा और रंगमंच दोनों माध्यमों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। हालांकि उनका पहला प्यार थिएटर ही था। उनके पृथ्वी थिएटर ने करीब 16 वर्षों में 2000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां दी।
1: Well, right, the pioneer of Indian theater and of the Indian the Hindi film industry, he started his career as an actor in the silent era of Hindi cinema. Well, the government of India honored him with Padma Bhushan in 1969 and Dada Saheb Phalke Award in 1971 for his contributions towards Indian सिनेमा।
0: वर्ष 1937 में उनकी एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी विद्यापति, और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर के अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा था। वर्ष 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कपूर कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। आइए उन्हीं की फिल्म का एक संवाद हम डायलॉग सुनते हैं।
2: हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दखन रवाना कर दिया जाए।
3: मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं।
2: एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है।
4: हमारा सलीम जंग पर नहीं जाएगा।
2: हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं।
1: हाउ ग्रेट, राइट? डायलॉग फ्रॉम मुगले आजम। Today, listeners, we are also remembering Hirabai Barodekar, the Hindustani classical music vocalist of the Kirana Gharana. Well, we know her for her melodious and soulful voice, which you can also hear in the background. She was a pioneer of ticketed public concerts by women artists in India.

0: Well, after that, tributes to Yogesh Gaur, the unsung lyricist of Hindi films. Well, he harbored a passion for poetry at a very young age. So, and he in Yogesh got his first break as a lyricist with the film Sakhi Robin in 1962.
1: और शगुन विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीतों के लिए इनको खास तौर पर जाना जाता है
0: जी.
1: और इतने बेहतरीन इन्होंने गीत लिखे आनंद फिल्म के और बहुत ही हिट भी हुए, सुपरहिट भी हुए ये गाने. आइए सुनते हैं इस आनंद फिल्म के उनके लिखे कुछ गीत.

0: कितनी बड़ी दार्शनिक बात कही, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। और अब बात,
1: वेल वी ऑल्सो हैव, ही पेन द लिरिक्स ऑफ अदर मीनिंगफुल सॉन्ग्स एज वेल एंड सोल स्टरिंग सॉन्ग्स एज वेल एंड अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव लिसनिंग टू, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: टुडे लिसनर्स, इट्स आल्सो पंकज कपूर्स बर्थडे।
1: जी, पंकज कपूर एक ऐसे कलाकार जो कभी पारंपरिक हीरो नहीं कहलाए बल्कि अपनी बेहतरीन अदाकारी से बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ गए।
2: सितारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई संदेश भेज रहे हो, मैसेज या चैलेंज दे रहे हो, कह रहे हो तुम लोग अपने छोटे से ग्रह में रहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, वक्त पर बात करते रहते हो, हमारी तरफ देखो, हमें समझने की कोशिश करो। इस विश्वलोक के असीम रहस्य को कितना जानते हो।
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे यही अनुमति लेने का, तो

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टानपारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 128 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण

0: रण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड़।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवानी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा छोटी शुरुआत बड़ी जीत। एक मुलाकात में सुनिएगा रंगमंच और अभिनय अभिनेता श्रीअमितेश तिवारी से भेंटवार्ता और क्रम अपनी पसंद। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे चंद्रकांत कंधर्व। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर सुनिएगा, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेती में ड्रोन अपनावा लागत घटावा। हेलो चौपाल में सुनिएगा भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। जानकारी देंगे श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा यूनुस हुसैन खां का गाया राग बिहागड़ा। रात 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, राष्ट्रीय पत्रकार कार्यक्रम युवा भारती आप सुन सकते हैं। रात्रि 9:30 पर संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात्रि 10:00 सुनिएगा ख्याल गायन, कलाकार होंगी स्मिता मुकाशी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुबह 7:05 पर, सुबह 8:30 पर सुनिएगा समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय से भेंटवार्ता। बातों बातों में सुनिएगा सुबह 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सीताराम साहू और साथियों को। नई फिल्मों से सुनिएगा सुबह 10:00 सदाबहार नग में आप सुन सकते हैं। सुबह 11:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, दोपहर 12:00 फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत, ये गीत आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा दोपहर 1:30 पर, जिसमें आज के गोठ में रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर नारी गौरव गीतले भरे कहानी मोंगरा फिर ममहागे, आलेख और वाचन आशा शर्मा का, संपादन बीरभान साहू और प्रस्तुति रमाशंकर की होगी। चर्चा में सुनिएगा विश्व परिवार दिवस। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवानी।

0: दर्द नहीं होता तो प्रीत नहीं होती, शब्द नहीं होते तो गीत नहीं होती।
1: हल्के कदम रखना सीख लो, ऊंचे राहों के मुसाफिर, छोटे छोटे प्रयासों के बिना कभी जीत नहीं होती। तो दोस्तों, इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम हाजिर हैं आज की युवावाणी लेकर। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त प्रगति तांडी,
0: और मैं सुयश कुमार साहू, और आप स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: प्रगति,
1: हाँ?
0: एक बात बताओ,
1: हुँ?
0: क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल लोग अक्सर बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने से हिचकिचाते हैं?
1: हाँ सुयश, बिल्कुल लगता है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हम सिर्फ हिचकिचाते ही नहीं बल्कि खुद को रोक भी लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर शुरुआत छोटी होगी तो शायद उसका कोई खास महत्व नहीं होगा।
0: सही कहा तुमने। हम यह सोच लेते हैं कि जब तक हमारे पास कोई बड़ा प्लान, बड़ा संसाधन या कोई बड़ा मौका ना हो, तब तक शुरुआत कैसे करें।
1: लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर बड़ी चीज, चाहे वो सफलता हो, बदलाव हो या कोई बड़ा सपना, सबकी शुरुआत बहुत ही छोटी होती है।
0: अगर हम प्रकृति को ही देखें प्रगति, तो हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से ही शुरू होता है ना, और उस बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है, धैर्य लगता है और लगातार उसे पोषण चाहिए होता है।
1: बिल्कुल, कोई भी चीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर उसे सही समय पर मेहनत मिले तो वो बहुत बड़ा और मजबूत बन सकता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता में बदल सकते हैं।
0: हाँ, अब जैसे देख लो कि कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में मुश्किल होती है, हर बार उन्हें लगता है कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं कर सकते, और जब वो धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह कभी सफल नहीं होंगे।
1: लेकिन अगर वही छात्र रोज सिर्फ एक घंटा भी मन लगाकर पढ़ाई कर शुरू कर दे, तो वह धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी, आत्मविश्वास आएगा और कुछ समय बाद वही छात्र अच्छे अंक ला सकता है सुयश।
0: मतलब समझे साथियों, फर्क समय से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है शुरुआत से। आप जब भी शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है।
1: और ये बात सिर्फ पढ़ाई में नहीं सुयश, हर क्षेत्र में लागू होती है।
0: जैसे अगर कोई व्यक्ति फिट होना चाहता हो प्रगति, तो पहले दिन से ही वो जिम जाकर 2 घंटे या 3 घंटे एक्सरसाइज तो नहीं कर लेगा, है ना?
1: बिल्कुल,
0: उसे छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी।
1: 10 मिनट की वॉक, हल्की एक्सरसाइज और धीरे धीरे उसे बढ़ाएगा। सही कहा ना?
0: हाँ, और यही निरंतरता उसे एक दिन पूरी तरह फिट बना देती है।
1: सुयश, मुझे एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण याद आ रहा है।
0: बताओ।
1: वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का।
0: अच्छा, हाँ, APJ अब्दुल कलाम की बात तुमने कही, उनकी कहानी तो सच में छोटी शुरुआत और बड़ी जीत का एक जीता जागता उदाहरण है प्रगति।
1: एक साधारण परिवार में जन्मे, बचपन में अखबार बेचने का काम करना, और वहीं से उन्होंने अपने सपनों की शुरुआत की।
0: और जब उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा तो उनके सामने भी कई चुनौतियां थी।
1: हाँ, और उनकी पहली रॉकेट लॉन्चिंग भी तो असफल रही। उस समय आलोचना भी हुई, निराशा भी मिली,
0: लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को बेहतर बनाया,
1: और इन्हीं छोटी कोशिशों से दोस्तों और लगातार मेहनत के कारण आगे चलकर उन्होंने अग्नि मिसाइल जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल की।
0: तो साथियों, आप सोचिए, अगर उन्होंने शुरुआत ही ना की होती या अपनी पहली असफलता से डर गए होते, तो क्या आज भारत को मिसाइल मैन मिल पाता? इस
1: एक बहुत बड़ा सबक मिलता है दोस्तों, कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती, और क्योंकि वही शुरुआत आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती है।
0: लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है प्रगति, कि हम शुरुआत

0: करने से डरते क्यों हैं?
1: सुयश, मुझे लगता है कि हम असफलता से डरते हैं और लोगों की बातों से भी। हमें लगता है कि अगर हम छोटा शुरू करेंगे तो लोग हमें कम आंकेंगे, या फिर हम ये सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे।
0: लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता साथियों, और अगर हम इंतजार करते रहें तो शायद हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाए। तो फिर इसका समाधान क्या होगा प्रगति?
1: समाधान बिल्कुल आसान है सुयश। जो कर सकती हो, जितना कर सकती हो, वहीं से शुरू करो।
0: मतलब छोटा कदम ही सही, लेकिन कदम जरूर उठाओ।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो शुरुआत करने से मत डरिए।
0: क्योंकि एक नन्ही पक्षी को भी अगर आप देखें तो उसे आसमान में उड़ान भरने के लिए पहले अपने पंखों को फैलाना पड़ता है, तब जाकर वह एक दिन पूरे आसमान में उड़ान भर पाती है। आपका पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है।
1: आपके हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकती है। याद रखिए साथियों, कोई भी जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास आपको जीत के करीब जरूर ला सकता है।
0: तो साथियों, अगर आप युवा हैं तो आप छोटी छोटी कोशिशों से अपना पंख फैलाइए और उड़ जाइए आसमान में, क्योंकि अब उड़ने की बारी आपकी है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?

0: भाई।
1: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: दोस्तों आइए चलते हैं क्रम एक मुलाकात की ओर और सुनते हैं अभिनेता और रंगकर्मी अमितेश तिवारी से धर्मदीप डोंगरे की भेंटवार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रंगमंच और अभिनय की दुनिया का एक जाना माना नाम अमितेश तिवारी जी को। आपने NSD वाराणसी से अभिनय की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है और थिएटर फिल्म तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। मंच पर सशक्त अभिनय, संवाद अदायगी और समाज से जुड़े विषयों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में आपकी विशेष पहचान रही है। थिएटर की जीवंत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने युवा कलाकारों को भी प्रेरित किया है। अभिनय केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने की सशक्त कला है और आपने इसे अपने कार्यों से सिद्ध भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं अभिनेता एवं रंगकर्मी अमितेश तिवारी जी का और जानते हैं उनके अभिनय सफर, संघर्ष, अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो अमितेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा, ऑल इंडिया रेडियो के जो भी कार्यकर्ता और आप सर जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और इस लायक समझा कि मैं कम से कम बोल सकूँ। धन्यवाद सर।
4: तो अमितेश जी आपका थिएटर की ओर पहला कदम कैसे पड़ा इसके बारे में बताइए।
5: जी सर, सबसे पहले सर एक रूल है, एक नियम है, वो मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे एक श्लोक है क्योंकि मैं वाराणसी से आता हूँ।
4: जी जी,
5: वाराणसी से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है तो मैं एक श्लोक आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूँगा।
4: जी।
5: आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम नमम सात्विकम शिवम। सर ये जो मेरे अंदर जो ये इंटरेस्ट है, ये सब कुछ है, वो सारा का सारा अगर बहुत बड़ा प्रतिशत आप कहें तो वो मेरी माताश्री से आया है, मधु तिवारी जी से, जो कि एक बहुत अच्छी कवियत्री हैं
4: जी।
5: और अभी हाल ही में उन्होंने रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में पूर्ण अनुवाद किया है सर
4: जी, जी।
5: तो उनके थ्रू ही ये शायद हो सकता है कि थोड़ा सा इनहेरिट हुआ है आप ये कह सकते हैं। पर इसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई में, तो वहां पर जाने के बाद एक मेरे गुरु हैं हेमंत नायक सर
4: जी,
5: तो उन्होंने मैं सबसे पहले मुझ में वादन की प्रतिभा देखी, जैसे हम लोग तबला वगैरह जो भी है, तो मैं परकशनिस्ट हूँ सर स्टार्टिंग से
4: जी।
5: फिर धीरे धीरे नृत्य की ओर मेरा रुझान बढ़ा, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं माताश्री मेरी राइटर है तो मुझ में राइटिंग की भी थोड़ी मतलब इंटरेस्ट कह सकता हूँ वो आया। उसके बाद मैंने देखा कि ये सारी की सारी प्रतिभाएं कहाँ पर उपयोग हो सकती है
4: जी।
5: फिर अचानक महाराष्ट्र मंडल से वैभव किशोर नाम के एक थिएटर के इंस्ट्रक्टर आए
4: जी।
5: तो उन्होंने बताया कि आप जो भी करते हैं, उन्होंने मुझे ये समझाया जो कि एक श्लोक मैंने बाद में पढ़ा, वो है नतज ज्ञानम नतज शिल्पम नसा विद्या नसा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन्न यन्य दृश्यते। कोई भी कला, जितनी सारी कलाएं हैं, सारी कलाएं जाकर सम्मिलित होती हैं थिएटर यानी कि रंगमंच में। तब वहां से मेरा एक रास्ता शुरू हुआ करीबन 9वीं कक्षा या 11वीं कक्षा के में से।
4: जी जी
5: जी, वहां से।
4: तो NSD में प्रशिक्षण का अनुभव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा उसके बारे में बताइए।
5: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो पहले सर वहां पर सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही हार्ड होती है, थोड़ी सी टफ होती है
4: जी,
5: मुश्किल होती है कहना चाहूंगा। और यहाँ पर वहाँ जाने के अनुभव से पहले मैं ये जरूर, पहले तो अपने गुरुओं का धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है सर। तो हीरा मानिकपुरी सर
4: जी,
5: अभिषेक बाबा सर,
4: हाँ।
5: और सिग्मा उपाध्याय, ये मेरे गुरु रहे जिन्होंने मुझे बहुत ही सहायता प्रदान करी वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो जैसा रंगमंच हमने सिर्फ सुना था, हबीब सर यहाँ के बहुत अच्छे रंगमंच के मतलब हमारे तो परम गुरु ही कहेंगे रहे हैं, तो वैसा रंगमंच मैंने जाकर वहाँ पे समझा है, जाना है, पहली बार किया, तो वो मेरे लिए प्रशिक्षण ऐसा रहा है कि वहाँ पे तरह तरह के फोक फॉर्म हो गए, फोक फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म, इतने सारे सीखे, बहुत अच्छा लगा है। और वो सर बॉडी, वॉइस और माइंड, ये तीनों पर इतना अच्छे तरीके से काम हुआ जिसका मैं अभी शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता, तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए वो जो है अनुभव
4: जी। तो थिएटर और फिल्मों में अभिनय के तरीके में आपको क्या अंतर महसूस होता है?
5: सर जैसे कि हमको सिखाया गया है, जैसे मेरे गुरु ने कहा है, मैं तो अभी इतना छोटा हूँ आप जानते
4: जी,
5: ही हैं
4: जी,
5: तो मैं सीखा हूँ, जो अभी तक मैं करके समझा हूँ यही है सर कि भाव का कोई मीडियम, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाव के लिए सब, थिएटर में भी वही भाव होता है, सिनेमा में भी वही भाव होता है
4: जी।
5: ये जो एक्सप्रेशन का जो मीट,

0: है
1: हाँ।
0: वो शायद चेंज हो जाता है सर, जो टेक्निकलिटी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने माइक रखा है
1: जी,
0: आप जिस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं शायद मैं ना कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक वो टेक्निकलिटीज का नॉलेज
1: जी
0: जिसको जहां पर है, अगर आपको थिएटर करना है तो वहां पर टेक्निकलिटीज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, फिल्म में अलग हो जाती हैं, अदरवाइज सर कोई डिफरेंस मैं एज सच नहीं बता सकता टेक्निकलिटीज के अलावा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: आप NSD वाराणसी में
0: जी
1: शिक्षा लिए है ना,
0: जी
1: तो वाराणसी की सांस्कृतिक और रंगमंची परंपरा ने आपके अभिनय को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में बताइए।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि लोग जब भी मैं कहता हूँ कि मैं वाराणसी से आता हूँ या बनारस से मैंने शिक्षा ली, तो सबको यही लगता है कि ये तो वैदिक परंपरा है या बनारस में बहुत बरसों से चली आ रही है एक परंपरा होती है जो कि श्लोक से होकर के गुजरती है, तो वो होते ही श्लोक सुनते ही लोग कहते हैं बहुत बोरिंग है यार ये, इसमें कैसे शिक्षा होगी, ये कौन सी शिक्षा है।
1: जी
0: पर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर सारे और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, सब कुछ हैं, पर वहाँ पर एक चीज़ अच्छी है सर कि यहाँ पर भारतीय परंपरा, या भारतीय नहीं कहूँगा, हमारा जो सनातन परंपरा है और ह्यूमन कोर जहाँ से आता है वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा है, तो भरत मुनि जी ने पूरा साइंटिफिक तरीके से नाट्यशास्त्र को रचा है। वहाँ पर मैं एक श्लोक पे अभी काम कर रहा हूँ, जो मेरा अभी आगे का जो एक योजना है मेरी, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया हुआ है सर, वो एक श्लोक से ही होकर के गुजरता है।
1: जी
0: रसा भावा यभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया सिद्धि स्वरास तथातोद्यम गानम रंगश ससंग्रह।
1: जी
0: जितने भी मेथड है स्टानिस्लावस की, ये ली स्ट्रासबर्ग या जो भी हो, उटा हैगन, इतने सारे मेथड हमने जो पढ़े हैं वो सारे के सारे एक श्लोक में समाहित हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। और साथ में सर मैंने यक्षगान, अंकिया नाट और साथ ही साथ बहुत सारे जो फोक डांसेस हैं और साथ में फोक नाटक वो सारे किए, तो उसमें से समझ में आया कि भाव कैसे निकालना है, रस क्या होता है,
1: जी
0: और बेसिक जो अभिनय की एक एक परंपरा जो है वो सारी चीजें वहां पे सिखाई गई है सर, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो शायद किसी और मेथड में नहीं होगा। अभी तो बड़े बड़े अभिनेता भी मानने लगे हैं कि नाट्यशास्त्र में ही सब कुछ है।
1: जी
0: जी सर,
1: तो एक अभिनेता के लिए थिएटर क्यों जरूरी माना जाता है?
0: सर इसका एक ही उत्तर है, एक ही शब्द का उत्तर है, वो है अभ्यास।
1: जी
0: अभ्यास से ज्यादा कुछ नहीं है सर, थिएटर से अच्छा अभ्यास एक अभिनेता के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता।
1: जी जी
0: जी
1: तो मंच पर लाइव अभिनय करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है नियति और उसके बाद मृत्यु।
1: जी
0: कोई भी कैरेक्टर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो उसके पीछे जो भी चल रही है, उसके पीछे कैरेक्टर का क्या डिटेल्स है, सब कुछ याद रख करके एंट्री करना। सिर्फ आप प्रवेश जब करते हैं तो आपके प्रवेश में वो चीजें दिख जानी चाहिए कि आप हाँ आप यही कैरेक्टर हैं, आप यही चरित्र हैं।
1: जी
0: ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेज में अगर एक बार आप चले गए तो गला सूख जाता है हालांकि, लेकिन वहां जाने के बाद अगर आपने वो चीजें नियति आपने पाली, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ सतह पर आ जाती है और बहुत अच्छे से होता है। बस सबसे मुश्किल यही है सर, अगर वो बिगड़ जाता है तो फिर बहुत तकलीफ होती है।
1: जी जी जी
0: जी
1: तो अभिनय सीखने के दौरान आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे उस टाइम पर?
0: प्रेरणा स्रोत सर, अगर मैं, क्योंकि फिल्म देख करके हम बड़े हुए यहाँ छत्तीसगढ़ में, खास करके रायपुर छत्तीसगढ़ में, मैं जब थिएटर के बारे में बहुत कम जान रहा था, वो तो बहुत ही भाग्यशाली रहा कि माता श्री ने मुझे बहुत पहले ही अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बताया था कि अगर आपको थिएटर करना है, अगर आपको रंगमंच करना है तो आप ये पढ़िए। वो मेरा एक प्रेरणा स्रोत कि मैं हाँ चलो ये मैं पढ़ सकता हूँ ये। लेकिन अगर आप कहेंगे प्रेरणा स्रोत के बारे में तो कहीं ना कहीं वो मुख्य अभिनेताओं के ऊपर ही आता है सर, जैसे ओमपुरी सर हो गए, नसरुद्दीन सर, और जो कि मेरे सीनियर भी हो गए हैं अब, तो बहुत ही लकी फील करता हूँ सर, मनोज वाजपेयी सर और के मेन, ये सारे लोग रहे हैं, और साथ में सर मेरी माताश्री और मेरे नानाश्री, ये दो लोग रहे हैं।
1: जी जी जी अमितेश जी, थिएटर कलाकारों को फिल्मों या OTT तक पहुँचने में किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है इसके बारे में बताइए।
0: खासकर सर अगर थिएटर हमारे यहाँ पर कैसा थिएटर होता है, वहाँ कैसा थिएटर होता है, ये सब जो ये सारे क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया और कहीं कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है, कोई अच्छे थिएटर से जो करके आए, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से बोले, किसी भी एक अच्छे एक थिएटर परंपरा से, जैसे कि दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर होता है लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ भारत के हर कोने में होता है पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ से अगर कोई जा रहा है उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो इतने सारे तरीकों के अभिनय कर चुके होते हैं। थिएटर का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं है, आवाज पहुंचाना नहीं है, अपना भाव पहुंचाना होता है।
1: जी।
0: तो ये काफी हद तक थिएटर एक्टर्स के लिए आसान हो जाता है कि वो, क्योंकि सिनेमा में आप जब बैठते हैं तो आपको लगता है आपके माइक तो आपके पास है, कैमरा आपके पास आ रहा है, तो सिर्फ आपको रिएक्शंस एक्शन से ही सारी चीजें दिखानी है, तो बहुत आसान हो जाता है। उन थिएटर एक्टर्स को बहुत समस्या होती है सर, जिनको इन टेक्निकलिटीज के बारे में और अच्छे से जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, अनफॉर्चुनेटली उनको ये दिक्कतें आती है कि भाई मैं तो चिल्ला करके ही बात करूंगा, या तो मैं एक्सप्रेस करने के लिए बैठा हूँ, मैं इमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं मतलब इस तरीके की जो समस्याएं वो

0: ये सर।
1: जी,
0: बाकी अदरवाइज कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है जो कि इंडस्ट्री का एक डार्क ट्रुथ भी है।
1: अच्छा।
0: कि ऑडिशंस हमको देने पड़ते हैं, तो ऑडिशंस की भी बहुत सारे वहाँ पे टेक्निकलिटीज हैं, वहां तक पहुंचना, एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचना जो आपके कोर को समझ पाए, उस कैरेक्टर के कोर के समझ पाए।
1: जी,
0: तो सबसे ज्यादा मुझे कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचना ही हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
1: जी। एनएसडी में आप जब प्रशिक्षण ले रहे थे उस टाइम पर किसी यादगार नाटक या मंचन का अनुभव रहा हो तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: बिल्कुल सर, ये जो नाटक था विदिशा प्रहसन, ये मैंने किया, ये मालविकाग्निमित्रम का जो रूपांतरण है उन्होंने, तो हमारे डायरेक्टर सर ने किया था और उन्होंने ही उसको डायरेक्ट भी किया। ये सबसे ज्यादा यादगार इसलिए रहा सर क्योंकि उसी टाइम पे जो आपने अभी जस्ट इसके पहले जो सवाल आपने किया था, इसके पहले का प्रश्न कि थिएटर एक्टर्स को क्या समस्याएं होती है, मुझे ऐसा लगता है इस नाटक के पहले तक मैं भी वैसा ही एक्टर था एक जिसको कुछ नहीं मालूम था थिएटर क्या होता है और सिनेमा क्या होता है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस इसी नाटक में पूरा कवर हो गया। मैंने राजा का किरदार इसमें किया था सर, एक लीड था मैं इसमें। तो सर ने जो क्लासिकल नाटक को रियलिस्टिक वे में जो किया, रियलिस्टिक से ज्यादा मैं कहूंगा नेचुरलिस्टिक, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दी इस नाटक को लेकर, और ये नाटक लकली भारंगम भी पहुंचा सर, वहां भी बहुत फेमस रहा। तो सर विदिशा प्रहसन में जब हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो सर ने करीबन 3 से 4 अभिनय तकनीक या एक्टिंग मेथड्स को उन्होंने बताया कि तुम ये कर रहे हो, करना तुमको ये है। और उसके बाद फिर क्या डिफरेंस होता है एक अच्छे थिएटर एक्टर में, एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट में, इसी प्ले में मैंने सीखा सर। घंटों घंटों का अभ्यास केवल एक पदचारी के लिए, पदचारी कहने का मतलब चलने का तरीका, तो वो करीबन 4-4 घंटे डेली अभ्यास होता था। डायलॉग्स याद नहीं करने हैं, उसको समझना कैसे है, क्योंकि सर संस्कृत के बहुत सारे डायलॉग्स थे, संस्कृत के साथ में थोड़ा सा तमिल और थोड़ा सा ये हिंदी था उसमें, तो बहुत सारी चीजें वो कैसे हमको समझ करके बोलना और कैरेक्टर में कैसे उतारना है अपने आप को, ये मैंने यहीं से सीखा था सर।
1: जी,
0: तो बहुत यादगार रहा।
1: जी, क्या आपको लगता है कि डिजिटल दौर में थिएटर का महत्व कम हुआ है या बड़ा है?
0: सर प्रैक्टिकलिटी में अगर बात करूं तो अटेंशन स्पैन एक टर्मिनोलॉजी है, आपको भी अच्छे से मालूम है सर, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है दर्शकों का, ऐसा हमको भी लगता है। क्योंकि अगर मैं आज के समय पर रायपुर छत्तीसगढ़ में अगर मैं थिएटर करता हूँ, मैं जिनसे सीखा हीरा मानिकपुरी सर, उनका सबसे बेस्ट थिएटर है, तो वो लोग भी शोज करते रहते हैं वहाँ पे, पर जो दर्शक है सर बहुत ही डेफिनेट है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक स्ट्रगल का दौर जरूर है, इसीलिए थिएटर, क्योंकि डिजिटल स्पैन में आजकल रील्स आ गया है, सब कुछ है, वो सारी चीजें 30-30 सेकंड में, वो भी बहुत अच्छा माध्यम है सर, वो भी बहुत अच्छा माध्यम है, मैं ये नहीं कहता कि उसको कभी नहीं करना है, लेकिन थिएटर जो कर रहे हैं मुझे लगता है ये हमारी ही जिम्मेदारी है, ऑडियंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये थिएटर कर्मियों की, रंग कर्मियों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा एक थिएटर को मार्केट करे उसी रील्स के थ्रू। तो मैं दोनों को कंबाइन करके कोशिश करना चाहता हूँ, बट हाँ एक तरह का स्ट्रगल तो हम लोग कर रहे हैं सर।
1: जी, आप जैसे युवा है और युवा कलाकारों के लिए थिएटर प्रशिक्षण कितना आवश्यक है?
0: जिनको भी इसमें से सीरियस, मैं ग्लैमर की ओर नहीं लेकर जाना चाहूंगा या कुछ भी, जिनको भी एक सीरियस करियर बनाना है, ये मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोला हुआ है सर, बहुत सारे हमारे जो सारे शिक्षक यही कहते हैं कि अगर आपको करना है तो आपको जीरो से शुरू करने के लिए थिएटर सबसे अच्छा माध्यम है। रंगमंच, आप एक गुरु या एक रंगमंच का जो एक ग्रुप होता है वो आप पकड़िए, वहां से ही शुरू करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि टेक्निकलिटीज अगर आपको आती है पर आपको जो मेन है, जो प्रमुख चीजें हैं वो है अभिनय सर। अभिनय में प्रस्तुत करना, स्वयं प्रस्तुत करना या स्वयं के भावों को प्रस्तुत करना।
1: जी, अभिनय में भावनाओं को स्वाभाविक बनाए रखने के लिए आप क्या अभ्यास करते हैं?
0: जी अगेन सर, किसी भी चीज को स्वाभाविक बनाने के लिए आपका उसमें इतना अभ्यास होना चाहिए कि वो आपके कमांड पर हो और आप उसको डिलीवर कर सके।
1: जी,
0: तो इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मैंने बताया सर, चलने के लिए 3-4 घंटे का अभ्यास को, क्योंकि वो दिखने लगता है बॉडी में, अगर मुझे कंधा झुका करके चलना है तो क्यों चलना है, उसका एक कारण पहले होना चाहिए, वो सारी चीजें आप फाइंड आउट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक प्रोसेस में आता है। इसीलिए थिएटर भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज को स्वाभाविक बनाने के लिए। ओवर एक्टिंग से एक्टिंग तक की जर्नी होती है ये, ओवर एक्टिंग से स्वाभाविकता की ओर की जर्नी है। किसी भी चीज़ को आप ओवर करते हैं, फिर उसको आप कम करते करते करते करते आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं कि फिर वो आपकी बॉडी में नेचुरल लगने लगता है।
1: जी,
0: तो एक ही इसका आंसर अगेन है, अभ्यास।
1: जी, फिल्म और थिएटर के दर्शकों की प्रतिक्रिया में क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है सर। थिएटर का जो सबसे ज्यादा जो मजा आता है सर, वो थिएटर होने के बाद ही है। रंगमंच के बाद जब आप अपनी पोशाक उतारते हैं, हमने भी ये, मैंने तो एनएसडी में जाके सीखा है सर, हम मिलते नहीं है दर्शकों से करीबन आधे एक घंटे तक।
1: जी,
0: पर उन आधे एक घंटे में भी वो वहां खड़े रहते हैं।
1: जी,
0: वो दर्शक इतने अभिभूत होते हैं कभी कभी सर, मैं अच्छे थिएटर के उसकी बात कर रहा हूँ।

0: हाँ
1: वो इतने अभिभूत होते हैं कि वो खड़े रहते हैं चाहे आप पूरे कैरेक्टर से बाहर आते हैं।
0: हाँ हाँ
1: एंड उसके बाद आप जब जाते हैं उनसे मिलने तो वो वही के वही आपको समीक्षा देते हैं,
0: जी बिल्कुल,
1: वही के वही अपने जीवन के आदर्शों को वो आपको बताते हैं कि
0: अपनी
1: आपने ये
0: प्रतिक्रिया
1: किया,
0: दर्शाते हैं,
1: तुरंत तुरंत
0: तुरंत
1: एक
0: देते हैं।
1: प्रतिक्रिया आती है, बहुत अच्छी आती है
0: जी जी
1: वो, बहुत अच्छा लगता है। और सिनेमा में एक अलग मजा है, सिनेमा में वो 3-4 दिन तक आपके साथ रहता है,
0: जी
1: थिएटर
0: बिल्कुल।
1: तो करीबन महीनों रहता है उनके साथ में, लेकिन जो एक अच्छी फिल्म अगर आप देखें तो वो तो मैं ये कहूंगा कि उसको बार बार रिवॉच किया जा सकता है, लेकिन
0: बिल्कुल
1: थिएटर को आप एक बार देखते हैं तो वो दोनों में यही मजा है सर।
0: जी। भारतीय रंगमंच के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं?
1: सर अभी तो फिलहाल क्योंकि जो वेब सीरीजेस आपने बात करी, वेब सीरीजेस में सारे थिएटर के एक्टर्स हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही हैं बहुत सारे लकीली, और अभी सिनेमा में भी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिनेमा एक बहुत अच्छा माध्यम या मार्केटिंग हो गया है सिनेमा इसके लिए, थिएटर के लिए, तो थिएटर तो अभी चल रहा है सर। पर इसके साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप मेथड्स निकले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी निकली हुई है सर, जिसमें ये जो थिएटर है और
0: जी
1: वो
0: जी
1: साथ साथ में नेट एनटी ने भी इसको
0: एंटी
1: भी
0: है
1: दिया है अभी उसको मान्यता, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी तो थोड़ा स्लो है ये, लेकिन आने वाले दशकों में क्योंकि पोस्ट मॉडर्न अभी थिएटर एक

0: कहीं ना कहीं सिनेमा एक बहुत अच्छा माध्यम या मार्केटिंग हो गया है सिनेमा इसके लिए, थिएटर के लिए. तो थिएटर तो अभी चल रहा है सर, पर इसके साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप मेथड्स निकले हुए हैं, बहुत सारी चीजें अभी निकली हुई है सर, जिसमें ये जो थिएटर है और वो साथ साथ में नेट एंटी ने भी इसको भी दिया है अभी उसको मान्यता. तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी तो थोड़ा स्लो है ये, लेकिन आने वाले दशकों में, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न अभी थिएटर एक चेन निकला हुआ है, वो मुझे लगता है सर कि वो आगे बढ़ेगा.
1: एक अभिनेता के जीवन में अनुशासन और अध्ययन की क्या भूमिका होती है?
0: अनुशासन के बारे में बोल दूं सर, अनुशासन तो वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में या किसी भी एक अच्छे थिएटर में इतना ज्यादा होना चाहिए एक एक्टर को, क्योंकि कान नाक आँख सब कुछ खुला होना चाहिए जो कहते हैं, तो वो सब अभ्यास से आता है, और अभ्यास आप तभी कर पाते हैं जब आप अनुशासित होते हैं
1: जी.
0: तो अनुशासन इतना ज्यादा जरूरी है उसके लिए, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आप पकड़ रहे हैं, किसी भी चरित्र में आप जाना चाहते हैं, कोई भी थिएटर प्ले या कोई भी फिल्म करना चाहते हैं, उसका एक टाइमिंग होता है
1: जी.
0: और हर एक कैरेक्टर का एक रिदम होता है, तो रिदम और टाइमिंग आपको एक ही चीज से मिलती है, वो है अनुशासन से
1: जी.
0: और अध्ययन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा. मैं भी यही सोचता था कि हाँ मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं तो ये करना चाहता हूँ, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि सब कुछ ऐसा लगता है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, किसी परीक्षा की तैयारी, हर एक कैरेक्टर ऐसा लगता है कि कोई परीक्षा की तैयारी है,
1: कर रहे हैं.
0: क्योंकि इतना अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि एक्टर को लोग कहते हैं, हमारे गुरु सब कहते हैं कि एक्टर को सब कुछ आना चाहिए, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है सर, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हो, उस कैरेक्टर के बारे में उसको सब पता होना चाहिए, और उस कैरेक्टर को क्या पता है ये भी पता होना चाहिए
1: जी. जी, आपके अनुसार सफल अभिनेता बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है?
0: सफल अभिनेता बनने के लिए सबसे अच्छा गुण, जो अभी मैं भी इसमें कम हूं सर
1: जी, बिल्कुल,
0: वो है अभ्यास और अनुशासन. इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है सर
1: जी, बिल्कुल, बहुत.
0: और अभ्यास और अनुशासन किस चीज में रखना है ये आपको एक थिएटर ज्वाइन करने के बाद, वो करीबन एक महीने में ही पता चल जाता है, पर उस एक महीने के ज्ञान को सर बढ़ाते रहना, उसको हमेशा जिंदगी पर अमल करना जीवन में
1: जी.
0: ये बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी मैं भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ आपके सामने, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमेशा मेरे उसमें रहे
1: जी. बिल्कुल
0: जी.
1: तो अमितेश जी, आने वाले समय में आप किस तरह के किरदार निभाना चाहते हैं?
0: सर लकीली मुझे अभी दो तीन चांसेस ऐसे मिले हैं जिसमें मैं जैसा चाहता था वैसा मुझे मिल रहा है. जैसे कि मैं चाहता था सर कि मैं हर एक कैरेक्टर पकड़ूं, हर एक कैरेक्टर को निभाऊं, तो मैं अभी आने वाले एक वेब सीरीज में, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा सर, वो उसमें मैं एक पॉजिटिव ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ, और वहीं एक दूसरा एक फिल्म है जिसमें एक नेगेटिव सा किरदार है मेरा, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, वो ग्रे शेड होता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसका जो सुपर ऑब्जेक्टिव है वो होता है उस कैरेक्टर का. तो उस कैरेक्टर में मैं एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव निभा रहा हूँ, और मैं अगर आप पूछे मुझे तो मैं सर आगे चल करके हर एक जितना भी ज्यादा हो सकता है उतना मैं करना चाहता हूँ
1: जी,
0: इसमें कोई बाउंडेशन नहीं करना चाहता जी.
1: अंत में आपकी युवाओं को थिएटर और अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: मैं ये कहता हूँ सर, जो भी आना चाहते हैं सबसे पहले वो अपनी ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आप कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप इसमें आए. क्योंकि जब मैं यहाँ पर था सबसे पहले मैंने जब, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ सर, मैंने जॉब भी करी हुई है, तो जो भी युवा यहाँ पर आना चाहते हैं वो भाग करना है कि यार कुछ नहीं आता तो ये कर लेते हैं, ये ना करें, ये बहुत लोगों से मैंने देखा है, आज भी ऐसा होता है सर. और सबसे पहले आप बॉडी और इसमें मतलब ग्रूमिंग में ही, ग्रूमिंग करना एक्टिंग करना नहीं होता है, तो ग्रूमिंग में आप ध्यान कब दें, जब आपका इनर सर्कल पूरा हो जाता है, इनर जो आपका एस्थेटिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप आउटर आवरण पे ध्यान दें, मैं ये कहूँगा सर
1: जी. जी अमितेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी सारी जो जानकारियाँ साझा की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, और मैं आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ. धन्यवाद
1: जी. जी तो श्रोताओं, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे क्रम में एक मुलाकात में रंगकर्मी और अभिनेता अमितेश तिवारी की धर्मदीप डोंगरे से ली गई भेंट वार्ता.
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
4: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में.
3: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं.
4: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी.
3: 47 सालों से निरंतर सेवा में
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर.
5: आओ सुयश, गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे हमारे दोस्तों की इस फुर्सत भरी शाम को और भी खुशनुमा बनाए गीत और संगीत से. तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं क्रम अपनी पसंद.
2: बिल्कुल प्रगति, अपनी पसंद का गीत तो ठीक है, पर अपनी पसंद का कैरियर कैसे चुनें?

0: सवाल हर युवा मन को परेशान करता है कि माता पिता के अधूरे सपने पूरे करें या अपने दिल की सुने।
1: दोस्तों, ऐसे में ईमानदारी से खुद से सवाल कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और सुयश गालिब ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे पाठशाला फिल्म का ये गीत। आवाज थी सलीम मर्चेंट की, गीतकार और संगीतकार थे हनीफ शेख,
1: और फरमाइश थी इन श्रोता साथियों की इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुश्री आदित्य और अंजलि जंघेल, भाटापारा से पद्मिनी

0: रावत, शीला यादव, गुनगुन, अदिति, खुशी और तनुश्री नांदघान कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वरी और ऋतु राजपूत।
1: और प्रगति, मैं कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ।
0: बेशक।
1: कि वो रुलाकर हंसा ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक।
0: आगे मैं पूरी करती हूँ। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। ठीक कहा ना मैंने?
1: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और चलिए सुनते हैं अपनी पसंद का ये अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म टू से। ये गीत स्वर थे के और श्रेया घोषाल के। शुरू से सजाया था आर्को प्रावो मुखर्जी ने और गीतकार थे मुनीश मखीजा और आर्को पार्वो मुखर्जी।
1: और इस गीत को पसंद किया था जवाहर नगर दुर्ग से आर एस कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, वार्ड क्रमांक 9 रोहांसी से डगेसर राम साहू, घनश्याम नूतन, गौरव अलका, जानवी साहू, ग्राम बागमुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, कुर्सी भैंसा रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज सुष्मिता, दीपिका साहू।
0: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है जब हमारे आसपास की दुनिया चलती है पर हम थम जाते हैं।
1: मानो एहसासों के समंदर में हम कहीं खो जाते हैं। इन्हीं एहसासों को खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला यह गीत।

0: साथियों, ये सुमधुर गीत था फिल्म किस्मत कनेक्शन से। स्वर थे मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का, बोल दिए थे सईद कादिर ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और फरमाइश थी इन श्रोता साथियों की, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम कृष्णा देवांगन, ग्राम मेज का सोनढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा लिखिल, तरुणदीप नाग और भरदा मगरलोड से देव नारायण, भुवनेश्वरी मोनिका, सोनिका वत्सला, लक्ष्य और नित्या साहू का।
0: हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम दर्जुआ से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, सिरी गातापार से कुमारी लावण्या साहू, कुमारी उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू, प्रभु राम साहू,
1: बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी और शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा का।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, क्रम होंगे आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त, आपके रेडियो दोस्त सुयश साहू और प्रगति तांडी को, और स्वीकारें हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजे ही हिंदी में समाचार
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13

0: सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर।

सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्य ल 10,021 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करे गए है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि

0: विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेकाह करें। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करे जाते करेगीस सम्मेलन संबोधित करत केंद्रीय मंत्री श्री चौहान है कहिन कि अबले हर राज्य ला अपन एग्री क्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संभावना के आधार में कृषि रोड मैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय के पूरा टीम राज्य के संग ए दिशा में काम करे बर तैयार है रहे। श्री चौहान है कहिन है कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करे है। तिसरैया अग्रिम अनुमान के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन करीबन 376 मिलियन टन ले ज्यादा है जौन अब तक ले सबले ज्यादा है। उमन कहिन कि चौर उत्पादन में भारत विश्व में पहली स्थान में पहुंच गई है। सम्मेलन में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो शामिल हुईन। ए मौका में कृषि मंत्री श्री नेताम हकीन के छत्तीसगढ़ अब परंपरागत धान के खेती के संग्रह फसल विविधीकरण डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल स्थायी कृषि के एक नवा युग में आगू बढ़ा थे। राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 के जरिया राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवार मन के आर्थिक उत्थान पर काम कर रहे। एमा 82% लघु और सीमांत किसान और 31% अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल हैं। कृषि मंत्री है बताइन कि सरकार के लक्ष्य किसान ला गुणवत्तायुक्त बीज संतुलित खातु उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठिन राज्य ला 10,021 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करेगे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ए फैसला के स्वागत करत कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हर गरीब ला पक्का घर के संकल्प तेजी ले पूरा हुआ थे। उमन कहिन कि इस सहायता ले छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवार मन के पक्का घर के सपना साकार हुई। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार जम्मू पात्र परिवार तक योजना के फायदा समयबद्ध और पारदर्शी तरीका ले पहुंचाए बर प्रतिबद्ध है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। 3 दिन के महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेकाह करें। उन्हें समारोह के अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें। ए मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीन। ए महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत आने आने राज्य के आम उत्पादक शामिल हुए थे। समारोह संबोधित करत राज्यपाल हकीन कि ए महोत्सव हमार किसी परंपरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के उत्सव है। उन्हें मुख्यमंत्री है राष्ट्रीय आम महोत्सव ला प्रदेश के किसान मन ला फायदेमंद बताइन है। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहाले रखे गए ए महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शनी लगाए गए है। ये प्रदर्शनी हर एक दिन मझनिया 12 बजे ले रतिहा 9 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है नीट पेपर लीक के घटना ला दुर्भाग्यपूर्ण बताए है। श्री प्रधान है आश्वासन दीन है कि नीट के पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीका ले बिना कोनो गलती के संपन्न करे जाही। छात्र मल्ला संबोधित करत श्री प्रधान है ओमन ला आश्वासन दीन कि सरकार ओमन के चिंता ला समझते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान है कहिन कि सरकार ये सुनिश्चित करत है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI ये मामला के पूरा जाँच करे और दोषी मल्ला कड़ा सजा दे जाए। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI के खाली सीट मनु पर प्रवेश बर आज ले ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट में आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय डहाले जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के प्रक्रिया 3 चरण में होगी। पहली चरण के चयन सूची 16 ले 22 जून तक जारी करे जाही। उन्हें दूसरिया चरण के चयन सूची 26 जून ले 3 जुलाई तक और तीसरैया चरण के चयन सूची 8 ले 12 जुलाई तक जारी करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन

0: छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़वो पांचे समाचार कोती। पद्मश्री सम्मान ले अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ह आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सौजन्य भेंट करीन। मुख्यमंत्री ह उमन के उपलब्धि में बधाई और शुभकामना दीन। संग्रह मुख्यमंत्री ह बस्तर के दूरदराज के जनजाति अंचल में दशक भर ले निस्वार्थ चिकित्सा प्रदान करे के उखर योगदान के सराहना करीन। उन्हें गोडबोले दंपत्ति ह आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ले घलो भेंट करीन। ए दौरान श्री चौधरी ह उमल्ला ए राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामना दीन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के पुलिस आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी मल्ले मिले सूचना के आधार में एक ठिन संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाईस। ए दौरान सुरक्षा बल मन गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगल में संचालित करे जात माओवादी मन के हथियार, निर्माण केंद्र ले हथियार, विस्फोटक और शस्त्र बनाए के जिनीस जब्ती करेस। जब्ती करेगे कई ठिन माओवादी जिनीस ला घटनास्थल में ही नष्ट घलो करेगीस। सुनई अमल ने बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में मे बखत ग्रीष्म लहर और मानसून ऊपर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। इका प्रसारण काली 30 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले अंदरूनी ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ तक फैले हैं। उन्हें ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल के खाड़ी में बने हुए है। एकर अलावा बंगाल के खाड़ी ले नमी के आगमन सरलक हुआ थे। एक स्थिति प्रदेश के मौसम में बदलाव हो के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के जम्मू संभाग के एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हैं। उन्हें कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हुए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के आसार है। छत्तीसगढ़ सरकार नियत निलारार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद ले मुक्त क्षेत्र और वनांचल के जम्मू ग्रामीण मनला जन कल्याणकारी योजना ने जोड़ के 100% फायदा पहुंचाही। मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में मंत्रालय में रखे गए उच्च स्तरीय बैठक में ये योजना के रूपरेखा में आज चर्चा करेगीस। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 ठिन व्यक्तिगत हितग्राही योजना, 14 सामुदायिक सुविधा और 10 ठिन जरूरी सेवा गांव गांव तक पहुंचाए जाही। अब थोरकुन समाचार सारमा। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम है कोरबा जिला के पोरी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान में चलत सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक झिन लिपिक प्रदीप मिश्राला 40,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। बालोद जिला के पुरूर थाना पुलिस स्कूटी ले गांजा तस्करी करत एक झन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। एकर कराले 12 किलो ले ज्यादा गांजा बरामद करे गए है, जेखर कीमत 6 लाख रुपया ले ज्यादा बताए गए है। और रोजगार कार्यालय रायपुर कोतिले अस्थिबाधित दिव्यांग जन मन बर 5 जून के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैनन बाजार में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठिन राज्य ला 10,021 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करे गए है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे का करें। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 6:20 हुए हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन सर्वेभ्यः उच्च न्यायालयेभ्यः त्रिषु मासेषु एव रक्षिताः आदेशाः घोषयितुं निर्दिष्टम्। शिक्षा

0: नौ तीन एक एक पांच शून्य चार शून्य शून्य चार।
1: श्रोतो, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर गांव की हर घर की कहानी है। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से। पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
2: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
3: माँ माँ, बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीम देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
2: पर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
3: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ माँ, जल्दी आओ।
2: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
3: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
2: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
3: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
2: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तू बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
3: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
2: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
4: मैं हूँ सविता।
2: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
4: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
2: वो असल में राधा को ना, वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
4: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
2: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
4: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल, सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
2: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
4: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
2: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था

0: कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स यही सब पसंद है उसे।
1: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है। जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
0: और दीदी, मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
1: सीमा जी, ये सब पुरानी बातें हैं। लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
0: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
1: माँ अगर समझेगी तो बेटी डर

0: दान होता है। राधा को डराने की नहीं समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: और दीदी मैंने तो उससे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
0: सीमा जी ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती। उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियाँ, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
1: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
0: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
2: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
1: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
2: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
0: गोपाल काका ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
2: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
0: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
2: ये बात तो आप सही कह रही है, हम तो हंसी में कह देते हैं पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
0: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
2: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल टीवी यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
2: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
1: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
2: बेटा तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियाँ जो 8-9 साल की उम्र की है उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था पर अब जल्दी हो रहा है, आप जानते हैं क्यों?
2: क्यों
1: क्यों
2: क्यों
1: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
3: दीदी इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
2: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए काका, ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
4: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा जरूर बोलो।
4: जब मुझे वो

0: हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
1: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
2: अरे भाई, अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जीवन का नियम है।
3: यही तो असली बदलाव है। जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
1: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
0: मुझे अब शर्म नहीं आती है क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
2: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
4: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता पर समझ उसे सुंदर बना सकती है।
5: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय की पूरी टीम राज्यों के साथ इस दिशा में काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चावल उत्पादन में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
8: रोडमैप आपको बताया, कुछ राज्यों का बनाया जा सकता है। मैं जी जान से आपके साथ लगूंगा, केंद्र की पूरी टीम आपके साथ लगेगी। किसी भी दिशा में खेती को मत जाने दीजिए। राज्य के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के कौन सी फसल उधर की, कौन सी वेराइटी हम कैसे वो तय कीजिए। हम साथ आपके खड़े हैं। हर एक राज्य से मैं अपील करूंगा, आप अपने कृषि का रोडमैप, हमारे साइंटिस्ट तैयार है, हमारे अधिकारी तैयार है, हमारी योजनाएं आपके लिए हाजिर है और मैं भी हाजिर हूँ।
7: सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसानों की जरूरत के अनुसार तेज, व्यावहारिक और मांग आधारित शोध करें। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 1 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में जनप्रतिनिधि, वैज्ञानिक

0: हितकारी और किसान मिलकर खेत स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 के जरिए राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्के घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका ने किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव हमारी कृषि परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आम महोत्सव को प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक बताया है।
1: और भी किसान यहाँ पर आए हैं, उनको भी एक जानने का अवसर मिलेगा कि आम की खेती कैसे की जाती है। और आज जहाँ हम लोग अपने देश के किसानों की आय दोगुना करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसमें उद्यानिकी विभाग और आम की खेती ये भी एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है।
0: उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केन्द्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद की। बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर के सुदूर जनजातीय अंचलों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उनके योगदान की सराहना की। वहीं गोडबोले दंपत्ति ने आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री चौधरी ने उन्हें इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से अंदरूनी ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन लगातार हो रहा है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों में हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार ग्रीष्म लहर और मॉनसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 30 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़

स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के पानाबरस में आदिम आस्था स्थलों के संरक्षण संवर्धन और जनजाति संस्कृति सुरक्षा अभियान के तहत महासभा का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 27 से 30 मई तक मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक जन जागरूकता और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान में चल रहे सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक लिपिक प्रदीप मिश्रा को 40,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के पसान तहसील के पटवारी को एक किसान से 10,000 रूपए की रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। बालोद जिले की पुरूर थाना पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 12 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 6 लाख रूपए से अधिक बताई गई है। और रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून को शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नियर नीलानार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों और वनांचलों के सभी ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर 100% लाभ पहुंचाएगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की रूपरेखा पर आज चर्चा की गई। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक सुविधाएं और 10 आवश्यक सेवाएं गांव गांव तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार द्वारा ग्रामीणों को मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, महतारी वंदन योजना और कौशल विकास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए, आगामी मंगलवार 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा खेती की लागत घटाएं लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री दिनेश गांधी उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

जसविंदर नरूला, शान और संजीवनी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म क्या दिल ने कहा का गीत। गीत के बोल संजय खेल की थी और संगीत था हिमेश रेशमिया का। लीजिए और सुनिए अगला गीत फिल्म मोहब्बतें से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

0: राम राम राजेश भैया।
1: राम राम निधि और चौपाल सुनैया सबो संगवारी मल्ला हमर दोनों जन के
0: राम राम।
1: निधि नौटप्पा चलत है और गांव शहर पूरा देश भर में भारी गर्मी पड़त है और जंगल के जिनावर है चिड़ई चुरगुन मन पानी बिना और झान झोला के सेती मरत घलो है माने गर्मी अतेक है कि सहावत नहीं है। पहली नौटप्पा के 9 दिन कैसे पाए तैसे लगे अब तो नौटप्पा लगे के पहली और नौटप्पा लगे के बाद घलो आगे अंगरकस घाम पर थे।
0: सही बात कहेस भैया, अभी ए साल अतेक गर्मी है और अवैया साल कतेक गर्मी पर ही इला सोच के अकबकासी लगते।
1: सही बात
0: जंगली जिनावर चिड़ई चिरगुन मनखे सबो के शरीर हा अपन सहत ले गर्मी ल सही थे औ कहूं सहन नहीं हुए त चिड़ई चिरगुन जिनावर औ मनखे तक अपन जान लगावा डरथे।
1: सही बात है।
0: इसने ज्यादा जाड़ पानी घलो सबो बर जी लेवा हो जाते।
1: औ निधि अभी गर्मी के दिन है और गर्मी में हम सबो हलाकान हन फिर ये गर्मी के सदुपयोग हमन हा कर सकत हन कैसे जैसे कुआं है तरिया है डबरी है एक में के सफाई और गहिर करे में ये गर्मी के हमन सदुपयोग कर सकत हन और कहूँ नवा तरिया है डबरी है खनवाना चाहत हन तो ओखरो पर अभी बढ़िया बेरा है नहीं और कुआं तरिया डबरी बांध ये सबो हा बरसात के पानी ला सहजते और भुइया भीतर ज्यादा पानी है जाते और जल स्तर ऊपर आते।
0: ऐसने भैया ग्रीष्मकालीन जुताई बर घलो गर्मी के दिन हा बने होते। गर्मी मा ग्रीष्मकालीन जुताई करना देखन ता हमर खेत के बर जेन बन करगा कीड़ा मकोड़ा मन है तेन मर जाते। माटी है भुरभुरा होते माटी के जल धारण क्षमता हा बाढ़ते। ग्रीष्मकालीन जुताई कर लेथन त खरीफ फसल ओकर बाद जब हमन बोथा ना तो बन करगा के जेन निदाई कम करे ला हाँ पर थे। अब बनिहार भूतिहार मा या नीधा नाशक बिसाए के खर्चा घलो बांट जाते।
1: सही कहने थी और हमर खेती किसानी में दिनों दिन तकनीक के उपयोग हा बढ़ा जावत है और तकनीक के उपयोग ले हमार किसानी बोता है जल्दी सिरावत है नी। ऐसने एक तकनीक है ड्रोन तकनीक। ड्रोन तकनीक के उपयोग ले खर्चा और बेरा दोनों के बचत होते। एक एकड़ खेत में पारंपरिक तरीका ले दवाई खातू के छिड़काव करथन तो 2 से 3 घंटा के समय लग जाते और कहूँ हमन ड्रोन तकनीक माने ड्रोन के उपयोग करथन तो वही बूता है 5 से 10 मिनट में सिरा जाते।
0: भैया ऐसा नहीं कि गुड बात और करबो फिर अभी सुन लेथन ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: भैया ते अभी गोट बात करत रहे, नवा तकनीक आइले हमर काम बूता ह सरलग हो गे हे। यही नवा तकनीक म जोन ड्रोन तकनीक ला हमन जब अपनाथन ना तो बहुत काम जिन हे तेन हमर सरलग हो जाथे और वो ओकर ले फायदा घलो मिलते हमला। जैसे दवाई और पानी के बचत, ड्रोन ले छिड़काव करे मां लगभग 3% दवाई और पानी के बचत हो जाथे। ऐसने हमारे स्वास्थ्य बने रहते। ड्रोन के उपयोग ले किसान जहरीला रसायन के सीधा संपर्क में नहीं आवे, जेखर ले

0: त्वचा और सांस ले संबंधित जो रोग राई है ते नहीं हुए और
1: सटीक
0: छिड़काव होते एती होती वह फेंकावे नहीं है ना। सबो पौधा मन ला दवाई खातू बरोबर मिलते जेकर ले फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों बढ़ते।
1: और जिन संगवारी मन हा खेती पर ड्रोन बिसाना चाहते हमन ला सरकार रहा ले 40-70% तक अनुदान मिलते। कहूँ किराए में ड्रोन के उपयोग हमार किसान भाई मन करना चाहते तो ओमन हा कृषि विज्ञान केंद्र ले या कोनो ड्रोन वाले ले किराए में ड्रोन मंगवा सकत है। अब एक ठन बने बात यह है निधि कि गाँव की युवा संगवारी मन जन बेरोजगार है ओमन हा ये ड्रोन तकनीक पायलट बन के अपन खेत के संगे संग दूसर किसान संगवारी मन के खेत में दवाई खातों के छिड़काव करके उपराहा आमदनी कमा सकत है।
0: भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले मिलैया सब्सिडी या अनुदान के संगवारी मन ला है ना लाभ लेवे है ना ये मन ला लाभ मिले है और योजना मन के लाभ लेवे अब एमन हा और आगु भी एमन अपन काम ला करके आगे भी फायदा ले सकते हैं अपन किसानी के खर्चा ला कम करके ज्यादा लाभ और आमदनी कमा सकते हैं
1: जो सरकार सुविधा दे तो फिर लाभ उठाए हमारे संगवारी मन है ना। और निधि यू बच्चर बड़े बार बिहाव वैसे है ना और बिहाव होते तो दो परिवार जुड़ते नवा नता गोता जुड़ते है ना और दुल्हन दुल्हन के नवा जिंदगी शुरू होते और दोनों के मन में बहुत उछागल हो रही थे। ऐसने दुल्हन के मन में उछाह भरे ये गाना ला सुनथन जला गावा थे कुलवंतीन बाई।

चंदा के टिकली चंदाइनी के फुल्ली संगवारी हो गाना लगावत रही है कुलवंतीन बाई निधि आज आए शुक्रार और शुक्रार के दिन हमार संगवारी मल्ला अगोरे थे क्रम हेलो चौपाल के और क्रम हेलो चौपाल में हमार आज के विषय है भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रख रखाव। ये विषय में संगवारी मन के शंका और जिज्ञासा के समाधान करे पर हमार विशेषज्ञ हैं श्री सौरभ कश्यप नायब तहसीलदार रायपुर। कार्यक्रम के संचालन करते थे निधि शर्मा। तकनीकी सहयोग है प्रियंका डिक्सना और प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडेय।

0: संगवारी हो किसान संगवारी मन बर ओकर भुइयां अनाज उपजाए बर बहुते महत्ता रखथे। किसान संगवारी मन ह दिन रात मेहनत एक करके अपन भुइयां ल संजो के रखथे। वो भुइयां के दस्तावेज जिन जरूरी जानकारी है तेकर बनाए के प्रक्रिया कोन ढंग से होते, ओकर रखरखाव हम कोन ढंग से कर सकथन, ये विषय मा आज हमन जानकारी पाबो। संगे संग आप मन के शंका समाधान घलो यही कार्यक्रम मा करबो। आज है हमर कार्यक्रम हेलो चौपाल, जिमा आज के विषय है भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रखरखाव। और ये विषय से जुड़े आप मन के समस्या जिज्ञासा के समाधान करे खातिर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेषज्ञ श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। सौरभ कश्यप जी, आप मन के हम स्वागत करथन हमारे क्रम हेलो चौपाल मा। राम राम।
1: नमस्कार मैडम, और हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई बहन साथियों को राम राम, जय जोहार। किसान एक वो इकाई होती है जिसके ऊपर, जिसके बेस पे ही पूरा का पूरा हमारा एक अर्थव्यवस्था बसा होता है। लोगों का खान पान से लेके रहन सहन तक हर एक जगह अगर किसी इंसान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसान हो। तो आज इसी संबंध में हम किसानों को कैसे शासन ने योजनाएं का लाभ पहुँचाया, क्या क्या योजनाएं हैं, किस किस तरीके से हम जमीन का रखरखाव कर सकते हैं, उसके संबंध में क्या दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे।
0: आप मन संग गुड बात तो करबो, फिर हमर संगवारी मन के फोन कॉल आवत है। संगवारी मन का पूछना चाहते तेला सुनतन हमारे क्रम में। हेलो चौपाल जी, नमस्ते।
2: मैं राजेंद्र कुमार दामले को क्या था सिरमुंडल दीदी।
0: राजेंद्र जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम में। आप मन का पूछना चाहते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले।
2: दीदी जी, आज के विषय है बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है।
0: हाँ हाँ।
2: कि भूमि के जो रखरखाव है, कागज वागज है, दस्तावेज है, अगर गुम जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी होते, या कभी बांटा वाटा होता है, बंटवारा होता है आपसी में, तो भी हमें बहुत दिक्कत होते। तेकर बारे में थोड़ा बता देते हो कि हमला ओकर दस्तावेज कैसे करना है, कहाँ बनाना है और रख रखाव करना है। कभी ऐसे होते कि दस्तावेज तो हमारे ऋण पुष्टि का हमारे पास रहते, लेकिन कभी कंप्यूटर में B1 वगैरह नहीं निकले, वहाँ कट जा रहे, आने आने में नंबर हो जा रहे थे। तेकर बारे में थोड़ा सी जानकारी बता देते हो, इस साल बहुत अच्छा विषय रखे हो आप आज।
0: जी, बहुत उपयोगी विषय है, आपे मन भर है तो आप मन अपन समस्या के समाधान पावत हो विशेषज्ञ मन ले। जी
1: राजन जी, नमस्कार आपको।
2: नमस्ते सर। नमस्ते
1: जी। बहुत एक अच्छी चीज आपने बोला है, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे उनके साथ भी यही समस्या होता था। व्यक्ति जानकार अपने जमीन का होता है, लेकिन जब हम कागज पे उसको उतारते हैं, कागज को संभाल के रखना होता है, तो कई बार मिसप्लेस हो जाता है, गुम जाता है, या ऐसा होता है कि घर हमने बदला तो पुराना कागज जो पिछले घर में था उसको हम साथ में ले नहीं पाए, जीर्ण शीर्ण हो गया। इस टाइप की समस्या बहुत रहे। सबसे पहले तो हमें एक चीज इंश्योर ये करना है, एक चीज ये देखना है कि आपके पास जितनी भूमि है वर्तमान में, क्या आपको उसका चौहद्दी पता है, क्या आपको ये पता है कि वो भूमि आपके कब्जे में कहां से कहां तक है। क्योंकि अगर वो भूमि आपके कब्जे में है और आपको पता है कि उसकी सीमा क्या है मोटा माटा तौर पे, या गांव के चलन के तौर पे अगर आपको पता है, तो फिर वो भूमि को आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई ले नहीं जा सकता। भले ही कागज में वो चीज अगर ऊपर नीचे होती भी है, डिजिटल तरीके से हम उसको नहीं भी देख पाते हैं, तो सुधार की बहुत सी प्रक्रिया है। अगर हम ऋण पुस्तिका की बात करें तो वर्तमान में ऋण पुस्तिका के 2 से 3 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग ये होता है, ऋण पुस्तिका में आसामीवार गांववार एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन है उसका विवरण होता है, उसका होता है, साथ में उस खसरे के अंतर्गत रकबा कितना है वो होता है, साथ में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य जो उस भूमि पे उतना ही हक अदा करते हैं जितना कि नंबरदारी करता है जो पहला पर्सन है, ब्रेड ओनर है, वो करता है, इसका विवरण होता है। ये पहला उसका उपयोग है ऋण पुस्तिका का। दूसरा, जैसे कि नाम है ऋण पुस्तिका, इसका मतलब बैंक में हम लोन लेने के लिए अगर जाते हैं किसी, अभी के टाइम में तो खैर एक प्रणाली अलग हो गई है, डिजिटल हो गई है, लेकिन आज से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के पहले की बात करें, 2012 की के पहले की बात करें, 2000 से पहले की बात करें, तो व्यक्ति के पास सिर्फ कागज होता था, वो कागज लेकर जाता था, उस कागज के आकलन के अनुसार उस व्यक्ति को ऋण दिया जाता था कि आपके पास अगर 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ के अनुसार आपको ऋण दिया जाता था ताकि आप फर्टिलाइजर खरीद सके, बीज खरीद। तीसरा उसका उपयोग होता है कि कोई व्यक्ति शोध क्षमता प्रमाण पत्र अगर बनाता है, जो कि पेरोल के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को बेल पे जाना है बाहर या कोई कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर चल रही है, तो हम बॉन्ड ओवर संबंधित के सामने बंधक के तौर पे अगर जाते हैं, पेरोल के एवज में अगर जाते हैं, तो वो एक तरीके से एश्योरिटी होता है कि आपके पास इतनी जमीन है तो आप सामने वाले का इतना एक अमाउंट बंधक के तौर पे दे सकते हैं या रख सकते हैं, जिसके अनुसार वो पेरोल पे जा सकता है। ये कुछ फायदे होते हैं जो ऋण पुस्तिका से लिंक्ड होते हैं। वर्तमान में

ऋण पुस्तिका अभी शासन का योजना भी है, हम 2026 में जी रहे हैं, आने वाले समय पे ये डिजिटल होने वाला है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लोगों को मिलने भी वाला है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपके पास नहीं भी है तो भी ऋण पुस्तिका ग्रामीण अंचलों में दिया जाता था, आज से आई थिंक एक साल पहले तक वो दिया जाता था। वर्तमान में ऋण पुस्तिका क्योंकि डिजिटल होना है, डिजिटल होने के चक्कर में वो चीज़ें अभी थोड़ी कम हो गई हैं। ऋण पुस्तिका अगर आपका जीर्ण शीर्ण हो जाता है या गुम हो जाता था तो पहले की प्रक्रिया ये होती थी कि आप FIR करवा रहे हैं, FIR का पहला प्रति आप देते हैं तहसील में, तहसील में आप जीर्ण शीर्ण या गुम हो जाने कारण बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, भूमि का विवरण पटवारी से एक रिपोर्ट के माध्यम से आता है, उसको लगाने के बाद फिर गुण दोष के आधार पर आपको एक और ऋण पुस्तिका जारी की जाती थी। वर्तमान में दो तीन कारण होते हैं जिसके कारण क्या है कि आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि ऋण पुस्तिका में मेरा इतना रकबा है लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में मेरा दिखा रहा है कि रकबा कम है या ज़्यादा है या किसी लोगों का नाम छूट गया। ये जो त्रुटियां होती हैं ये इसलिए हुई थी क्योंकि 2016-17 के दरमियान

0: आपको एक और ऋण पुस्तिका जारी की जाती थी। वर्तमान में दो तीन कारण होते हैं जिसके कारण क्या है कि आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि ऋण पुस्तिका में मेरा इतना रकबा है लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में मेरा दिखा रहा है कि रकबा कम है या ज़्यादा है या किसी लोगों का नाम छूट गया। ये जो त्रुटियां होती हैं ये इसलिए हुई थी क्योंकि 2016-17 के दरमियान हम लोग ऑफलाइन रिकॉर्ड को ऑनलाइन करते गए। ऑफलाइन को जब ऑनलाइन करते गए तो कई बार क्या होता था कि एक टेक्निकल त्रुटि भी आती थी इसमें। लेकिन अगर आपके पास पूरे दस्तावेज हैं और आपके पास ये प्रमाण करने के लिए आपके परिवार वाले भी हैं और पंचांग होते हैं गांव में, यूजुअली सरपंच भी होते हैं पंच भी होते हैं, वो प्रमाणित करके पंचनामा के साथ अगर देते हैं, साथ में पटवारी प्रतिवेदन आता है, आपका जितना जमीन जितना रकबा है वो कहीं नहीं, वो अंतरण होता ही है, सुधार होता ही है।
1: जी राजेंद्र जी, आशा करते हैं कि आप मन की शंका के समाधान होगी हुई।
2: नहीं दीदी जी, बहुत अच्छा जानकारी दे, अच्छा विषय रखे हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परवाल लाओ सर जी भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, आप मल्ला फोन करे एक खातिर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चौपाल,
3: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था।
1: वर्मा जी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रम में।
3: बहुत स्वागत है
1: जी,
3: और डॉक्टर भैया राम राम
1: जी। आज आप मतलब मालूम हो ही कि भूमि के आवश्यक दस्तावेज ल बनाए के प्रक्रिया ओकर रख रखाव के बारे में आज हमारे संग विशेषज्ञ बैठे हैं श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर।
3: साहब मोर माय भरे राम राम।
0: राम राम वर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: जैसे मोर पास 30 एकड़ जमीन है और मोर पैतृक संपत्ति है
0: जी,
3: तो एक आवश्यक जो दस्तावेज है वो कौन कौन से होना चाहिए, कहाँ से हम मतलब बनवाई, और एक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से का लाभ ले सकते साहब, यही बात मैं पूछे बार फोन लगाया हूँ साहब।
0: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। 30 एकड़ आपके पास जमीन है तो एक तरीके से आप तो बहुत संपन्न हैं। एक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप करोड़पति ही हैं। बल्कि आपको हमसे नहीं, हमको आपसे समस्या पूछनी चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये आप सही सवाल पूछे। जैसे आपके पास 30 एकड़ भूमि है, 30 एकड़ भूमि में आप अगर देखेंगे तो हर एक गांव का रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है, आसामीवार रिकॉर्ड होता है, B1 में उसका उल्लेख होता है, हर एक व्यक्ति का एक गांव के अंदर में क्या रिकॉर्ड है, कितना उसका खसरा है, साथ में खसरा में किन लोगों का नाम है और साथ में उसका रकबा कितना अंकित किया गया है। अब वर्तमान में दो तरीके से आपके पास हो सकता है रिकॉर्ड, एक तो क्या है B1 की प्रति हर लोक सेवा केंद्र में आपको मिल जाती है। अगर आप अपना खसरे का आपको नंबर पता है, आप खसरा नंबर आप किसी को बताते हैं, लोक सेवा केंद्र में ही आपने आवेदन दिया या फिर बता भी देते हैं तो संबंधित व्यक्ति निकाल के देता है। लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास कुछ भी नहीं है आपको बस आपका नाम पता है, पिता का नाम पता है, आपको गाँव पता है, तो आप भूइयां करके एक साइट है, ऑनलाइन भूइयां साइट है, आपके घर में नौजवान बच्चे होंगे जिनको मोबाइल चलाना आता है, वो भूइयां की साइट में भूइयां छत्तीसगढ़ इतना बस अगर लिखेंगे तो भूइयां का साइट अपने आप खुलता है। भूइयां की साइट में जब आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक विकल्प होता है भूमि संबंधित जानकारी। भूइयां के साइट में छत्तीसगढ़ भू अभिलेख ऐसा लिखा होता है, भूमि संबंधित जानकारी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें खसरा का विवरण करके दिखाएगा, खसरा का विवरण हो गया, B1 हो गया, P2 प्राप्त करें ये दिखाएगा, B1 P2 का ID के थ्रू प्राप्त करें करके दिखाएगा। उसके अलावा अगर आपको डिजिटल हस्ताक्षरित मतलब पटवारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा वो अगर खसरा आपको निकालना है तो वो भी दिखा देता है। इस माध्यम से आपके अगर कोई ऐसा बालक है जो मोबाइल चलाना जानता है और उसको अगर खसरा नंबर पता है तो इसमें वो जानकारी डाल के बिल्कुल निकाल सकता है, निःशुल्क निकाल सकता है। खसरा विवरण में जैसे आप जाएंगे आप अपना गांव का नाम डालेंगे, राजस्व निरीक्षण मंडल का नाम डाल देंगे और नीचे में क्या है कि अलग अलग हल्का पटवारी के बार अलग अलग गांव का दिया रहता है सीक्वेंस, उसमें आप क्लिक करेंगे, खसरा नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं डाल के, या दूसरा आप अपना नाम हिंदी के देवनागरी लिपि में लिख के अपना नाम आप सर्च कर सकते हैं, इसके माध्यम से आपको B1 मिल जाएगा। B1 वर्तमान में क्योंकि हम डिजिटल की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो B1 अपने आप में सक्षम है, B1 से आप तहसील के 90% काम करवा सकते हैं, जैसे कि नामांतरण हो गया, बंटवारा हो गया, सीमांकन हो गया, या अगर किसी भी और तरीके का अंतरण हो, दान विलेख के माध्यम से अंतरण हो गया, या आप किसी को हक त्याग कर रहे हो वो अंतरण हो गया, B1 के माध्यम से ये चीजें की जा सकती
1: है। नारायण जी, आप मन की शंका के समाधान हो गए हुई, और कुछ पूछना चाहते हो?
3: हाँ नहीं दीदी, अब तो बहुत अच्छा जानकारी हम लोग मिल गया, हम साहब लोग बहुत

0: धन्यवाद देवता
1: जी, आप मतलब फोन करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चौपाल, कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
2: मैं बानीराम चंद्रवंशी बोलत हूँ दीदी, लखनपुर कवर्धा से।
1: हाँ चंद्रवंशी जी, का पूछना चाहत हो आज आप मन हमार विशेषज्ञ मन ले?
2: का है खेती बाड़ी के सब रख रखाव के बारे में, का है कैसे है उखरे बर लगा पूछे हम लगा दीदी।
1: हाँ तो देखो, रख रखाव तो बहुत सारे चीज है ना, भूया के जिन जरूरी दस्तावेज होते ओला कौन ढंग से बनाए जाए, ओकर रख रखाव कौन ढंग से करे जाए, ता आप मन कौन कागज पत्र के बात करना चाहत हो?
2: वही सब खातू माटी की दवाई गोटी खेती किसानी के बारे में दीदी, वो खर सब इंतजाम रखे रखे बार वही पूछे बोल लगा हम बोला था।
1: हाँ कतका भूया है आप मन तीर?
2: मोर पास 12 एकड़ है भूया दीदी।
1: हाँ
2: 10 एकड़ में लेदी है गन्ना धान बहुत कम हुआ था 2.5 एकड़। हाँ दीदी
1: रकबा खसरा
2: देखे के लिए दीदी।
1: हाँ हाँ हाँ तो हमारे
2: गन्ना है हमारे कवर्धा जिला।
1: तो चंद्रवंशी जी, ये बखत में आप मन जैसे दस्तावेज के रख रखाव के बारे में पूछना चाहते हो, तो हमारे विशेषज्ञ मन जरूरी दस्तावेज आप मन तीर का होना चाहिए तेकर जानकारी आप मन ला देवे थे।
3: चंद्रवंशी जी नमस्कार।
2: नमस्कार भैया,
3: आप गन्ने की खेती करते हैं साथ में धान भी उगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और राजनांदगांव और कवर्धा इस जो जोन होता है वहाँ पे क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो शेडो एरिया बोलते हैं, रेन शेडो एरिया, वहाँ पे बारिश उस तरीके से नहीं होती जैसे कि मैदानी क्षेत्र में हो। तो उसके बावजूद भी आप कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, गन्ना ग्रो कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत एक बड़ी बात है, उपलब्धि वाली बात है। और जहां तक बात रही कि आप क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं, तो उसमें तो सबसे पहला चीज हो गया, एक सामान्य आदमी के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आपको अपने भूमि का टोटल रकबा, जैसे आपने बताया 12 एकड़ है, उसके अनुसार आप B1 और P2 ये दोनों चीज, B1 बेसिकली खसरा के बारे में जानकारी होती है जो पटवारी के माध्यम से भी मिलता है, और साथ में आपको खसरा का अगर नंबर पता है आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, एक तो ये। दूसरा कि हम धान खरीदी करते हैं, धान खरीदी केंद्र में धान बेचते हैं, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम जो प्राइस होता है जिससे सरकार धान लेती है, उसके लिए अभी वर्तमान में जरूरी हो जाता है एग्रीस्टैक पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रीकरण पंजीयन। तो एग्रीस्टैक का पंजीयन ये बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी एक मिलता है, यूनिक कोड होता है 14 डिजिट का, तो वो बहुत जरूरी होता है। उसके लिए भी आपके पास B1 अगर आपको पता है, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक है, तो फार्मर आईडी बनाया जा सकता है। एक फार्मर आईडी में आप अपने नाम के अंतर्गत जितने खसरे आते हैं उसको आप लिंक कर सकते हैं, ताकि क्या है कि कल के डेट पे अगर मान के चलिए कि आपके परिवार में कोई और व्यक्ति आपके रेफरेंस से अगर बेचना भी चाहता है तो उस व्यक्ति को है ना पता रहे, क्योंकि आपका फार्मर आईडी बना हुआ है। उस फार्मर आईडी में दो अलग अलग गाँव के भी जुड़ सकते हैं, सिमिलर गाँव के भी जुड़ सकते हैं, जितना खसरा है जितना आपके पास एरिया है वो सब लिंक में आ सकता है, बशर्ते B1 आपके पास पता होना चाहिए। और B1 की जानकारी नहीं पता है तो लोक सेवा केंद्र से मिल सकता है, या संबंधित का पटवारी अगर आप उसके संपर्क में हैं तो उसके पास खसरा रहता है, खसरा को देख के वो आपको बता सकता है कि आपका क्या एरिया कितना, रकबा कितना है, आपका खसरा कहाँ है और किस भूखंड पे आप बसे हुए हैं करके।
2: भैया बहुत बहुत धन्यवाद
3: आपका। जी जी। अच्छा, आपके माध्यम से मैं और भी चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, धान का कटोरा हम इसको कहते हैं, लेकिन धान के कटोरे होने के बावजूद यहाँ पे आप ही के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2000 से पहले जो गिरदावरी होती थी, गिरदावरी में क्या है कि किसान के पास पटवारी जाता था, खेत में घूमता था उनके साथ, और जो पूरा रकबा जितना उसका एरिया है उसमें धान कितना लगाया, पड़त कितना है, ये सब की जानकारी देता था, वो हाथ से लिखता था। लेकिन वर्तमान में आप भी देख रहे हो, हाँ अभी जाता
2: गन्ना के धान की जांच करते कितने एकड़ में गन्ना है कितने धान है, पटवारी पूरा खार में घूमता है भैया अभी भी।
3: जी जी जी, ये अच्छी चीज है, और समय के साथ ये अब डिजिटल भी हो रहा है। डिजिटल कहने का मतलब अब गांव में जाके वो हर कोने से फोटो ले, पहले तो फोटो का प्रावधान नहीं था क्या व्यक्ति क्या उगा रहे हैं करके, लेकिन अभी वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वे भी हो रहा है, फोटो लेकर फोटो के माध्यम से भी ये वेरीफाई किया जा रहा है। और ये सब क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो गाँव के और भी लोग हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो और बेहतर होते जाता है।
1: जी भैया, आप मन फोन करे एकर खातिर आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
1: हेलो चौपाल, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: हाँ नर्मदा धाम ग्राम सिरसिली पोस्ट नांद जिला बालोद ने कैलाश यादव बोला था।
1: कैलाश यादव जी, हाँ आज आप मन का पूछना चाहते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले?
4: जैसे का है हमारे मन का खेती की पानी है, माना केसीसी से बैंक से नहीं जुड़े हैं, मतलब सोसाइटी से नहीं जुड़े ना मना, वो कर से संबंधित हम मतलब जुड़ना है, जैसे

0: रखा है कि वहाँ से केसीसी मतलब लोन लेना है, खातू लेना है, तो कर लिए हम का प्रक्रिया है, बारे में जानकारी चाहिए मतलब साहब से।
1: यादव जी नमस्कार।
0: नमस्कार साहब,
1: अभी आप बता रहे हैं कि आप कोई सोसाइटी से जुड़े नहीं है करके, लेकिन सोसाइटी से जुड़ने की अनिवार्यता केसीसी के लिए आवश्यक नहीं होती है। केसीसी में हर जिले में वहाँ का एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर होता है, सहकारिता निरीक्षक होता है, और साथ ही हर जिले में एक डीएमओ होता है, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर, विपणन अधिकारी जिसको कहते हैं। इनके माध्यम से आप अप्रोच कर सकते हैं, और सीसीबी भी एक होता है जो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर होते हैं, वो भी होते हैं। इनके माध्यम से हम बैंक एक अकाउंट हम खोलते हैं, और वो जो अकाउंट होता है वो बेसिकली केसीसी के लिए ही होता है। अगर आपके पास दो से तीन चीजें जो कि आवश्यक होती है, पहला आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए क्योंकि वो बैंक से लिंक्ड होता है, दूसरा आपके पास आधार होना चाहिए, और आधार के साथ साथ आपका आधार जो फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज कि आपके पास जमीन के दस्तावेज के तौर पे या तो आपके पास भू अभिलेख के दस्तावेज होने चाहिए, जैसे ऋण पुस्तिका हो गया, या तो फिर आपको जमीन का विवरण पता होना चाहिए जो कि B1 के माध्यम से भी पता चल सके। वो अगर नहीं भी है जी, तो आपको पटवारी के माध्यम से अपना नाम आप बताएंगे तो खसरा के अनुसार, वो गांव का खसरा के अनुसार आपको बता सकता है कि भूमि कितना रकबा और कौन कौन से खसरे हैं। और ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, औसत पता ही होता है ये सब। अब इसमें बात आती है कि कई बार हम क्या है कि फोन नंबर को लिंक नहीं करते आधार से, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचलों में आदमी जब खेती किसानी करता है तो फिंगरप्रिंट जो होता है, जो थंब इंप्रेशन होता है, कई बार घिस जाता है, तो हम फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं कर पाते, तो आधार से लिंक कई बार नहीं बन पाता। फोन नंबर हम चेंज नहीं कर पाते, एड्रेस चेंज नहीं कर पाते, आधार को हम लिंक नहीं कर पाते बैंक से, ये एक समस्या होती है। उसके लिए क्या है कि लोक सेवा केंद्र में ना एक और प्रोविजन दिया गया है, एक और तरीका है कि फेस स्कैन या आयरिस स्कैन, इसके माध्यम से भी हम सत्यापन कर सकते हैं। तो हमको हर चीज को एक साथ करने के लिए आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। और इसी की तर्ज पे सरकार का एक और प्रोग्राम था, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक का उद्देश्य ही ये था कि जैसे आधार है, आधार के माध्यम से एक आदमी की आइडेंटिटी जुड़ी होती है, वैसे ही एग्रीस्टैक के फार्मर आईडी से एक किसान के गांव में कितनी खेती भूमि है, कितना कितना वो खेत में क्या क्या उपज करते हैं, इसकी जानकारी रहती है। वो फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। फार्मर आईडी अगर आपका बनता है तो बैंक के प्रावधान भी लागू आराम से हो सकते हैं। फार्मर आईडी बनता है तो आप अगले ही वर्ष सत्यापन भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई सोसाइटी पे नहीं भी बेच रहे हैं तो भी वो बेचने में आसानी हो सकती है। तो फार्मर आईडी बहुत जरूरी। एक दूसरा तरीका ये तो पटवारी या तो फिर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ये लोग गांव में होंगे, उनसे आप संपर्क करके अगर आपका नहीं बना तो आप पहले फार्मर आईडी बना लीजिए। और केसीसी के लिए
0: परिवार में सर जी हम लोग चार भाई हैं तो चारों को सबका आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा।
1: नहीं, अभी वर्तमान में क्या आपकी भूमि बटांकन हो चुकी है, बंटवारा हुआ है क्या?
0: हाँ, बंटवारा हुआ है, मतलब खाता अलग नहीं हुआ है, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं
1: हाँ,
0: सबसे तो मेरा ही नाम से,
1: ठीक ठीक
0: छोटे हैं उनके नाम से अलग अलग है, लेकिन खाता अलग से नहीं फूटा है।
1: ये ऐसा आप अच्छा बताए हैं। गाँव के परिवेश में क्या होता है, एक सामाजिक ढांचा में हम बंधे होते हैं, तो हर व्यक्ति है ना ये बोलता है कि मेरे पास अगर पिताजी के पास 10 एकड़ भूमि थी, चार भाई हैं, तो ढाई ढाई एकड़ रख लेते हैं। अब सब अपने हिसाब से खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका बंटवारा नहीं हुआ रहता है तो राजस्व के रिकॉर्ड पे वो अलग अलग खाता नहीं रहता, वो एक ही संयुक्त खाता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि घर का जो बड़ा बेटा है उसके नाम पे ही वो 10 एकड़ आ जाता है, पिता से उसके नाम पे आ जाता है, लेकिन बाकी भाइयों का उसमें नाम नहीं चढ़ा रहता। ऐसे मामले में आप नामांतरण के लिए अर्जी कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं ताकि सभी भाइयों का नाम आ जाए। सभी भाइयों का नाम खाते में नामांतरण में आएगा, 30 दिन का प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा विस्तृत में। नामांतरण में अगर चारों भाइयों का नाम एक खाते में आता है तो आप बंटवारा चार अलग अलग कर सकते हैं खाते का। बंटवारा करने के बाद हर व्यक्ति स्वयं का एक फार्मर आईडी बना सकता है, नहीं तो जिस खाते में जिस व्यक्ति का नाम हो, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आप ही का नाम है, अन्य भाइयों का नहीं है, तो फार्मर आईडी बनेगा तो सिर्फ आप ही का बनेगा क्योंकि आपका नाम है, उस खाते में नाम है, ये कारण है। तो बहुत जरूरी होता है कि एक तो फौत नामांतरण उठना चाहिए, अगर घर में पिताजी की नेचुरल डेथ हुई है तो उनके बाद फिर उनके पूरे बच्चों का नाम चढ़ना चाहिए, और उसके बाद अगर बच्चों के बीच में आपसी सहमति है तो बंटवारा भी होना चाहिए। लेकिन अब ये पूरा का पूरा एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फौत नामांतरण उठना चाहिए।
2: हाँ भैया जी, सौरभ कश्यप जी, आप मन अपन कीमती बेरा में से बेरा निकाल के हमर किसान

0: संगवारी मन खातिर अतका उपयोगी जानकारी देव, लाभ के जानकारी देव, एकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए मैडम, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल चीज़ें दोनों को एक साथ लेके चलना है। हमारे किसान भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नींव है इस देश के लिए भी। खाना की पूर्ति 1947 के बाद ही हमारे पास उतनी नहीं थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, तो किसानों ने बहुत मेहनत किया, इसीलिए हमारा देश यहाँ तक पहुँच पाया। अब खाने की समस्या नहीं, बल्कि अब इस बात की समस्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कैसे। उस विषय पे भी अभी सरकार भी काम कर रहा है, किसान भी काम कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आने वाले समय पे और बेहतर होगा और बेहतर जीविकाएँ होंगी और आजीविका के और साधन मिलेंगे, और साथ ही कैश क्रॉप को डेवलप किया भी जा सकता है मशीन्स की यूज से, मशीनरी की यूज से। तो हम किसानों के आधार पे ही एक जिंदगी बेहतर जी सकते हैं, ये पूरा सारांश इसी बात पे है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी देव आपमन। आशा करते हैं कि आप मन के जानकारी से हमारे किसान सगवारी मन जरूर लाभ ली है। राम राम।
2: करम हेलो चौपाल में अभी सुनत रहे भूमि के आवश्यक दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं रख रखाव विषय में श्रोता संगवारी मन के शंका जिज्ञासा के समाधान करत जानकारी देवत रहीन श्री सौरभ कश्यप, नायब तहसीलदार रायपुर। कार्यक्रम के संचालन करत रहीन निधि शर्मा, तकनीकी सहयोग रही प्रियंका डिकसेना के, और प्रस्तुत करता रहीन शशि प्रकाश पांडे।
0: और संगवारी हो लीडर हो हमारे आज के प्रश्न ला। आज के प्रश्न है, किसान आईडी बनाए बर काका जिनिस लगते, एक घाव और बता देथन। किसान आईडी बनाए बर काका जिनिस लगते। अब पाछू हफ्ता आज के दिन पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर आप मन ला बता देथन। पाछू हफ्ता के प्रश्न जिसे कीटनाशक छिड़काव के समय कौन कौन से सावधानी रखना चाहिए, सही उत्तर है दस्ताना, चश्मा और मास्क लगावन, शरीर ला बने ढाक के कीटनाशक के छिड़काव करन। और सही उत्तर भेजिए संगवारी मन है
2: नवागढ़ कटेल है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा, शारदा दामनी वर्मा, मदनपुर कवर्धन है श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, नागर कोहरा राजनांदगांव लहे बबलू साहू, जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत, मठेना पाटन लहे बलकरण वर्मा, अंजनी नीरा ज्योति प्रहलाद, परसा टोला अंबागढ़ चौकी लहे प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसारणी, लोरमी चचड़ी लहे कमलकांत मरावी, प्रेमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, और बेमेतरा लहे सुरेश कुमार सारथी, कार्तिक पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत बीरेन, ब्रिजकांत सारथी। तो सही उत्तर भेजिए सबो संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
0: संगवारी हो आप मन बर सूचना है, हेलो किसानवाणी क्रम खातिर संगी हो अवैया मंगलवार 2 जून 2026 के प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के ये वक्त के विषय है, खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग, ये विषय में आप मन समस्या और जिज्ञासा के समाधान ये वक्त हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ रही श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप मन पर जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमारे मतलब फोन कर सकते हो। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 के 11:30 बजे ले 12 बजे तक ही करे जाही, और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के संझा 7:30 बजे करे जाही। संगवारी हो हमन मनला आप मन के फोन कॉल के अगोरा रही सूचना इहे तक।
2: निधि, घाम में मंझनिया कमाए जाल पर गए, रुख राई छैया मिल गए तो कतेक बढ़िया लगते है नी। तो इसने जब यह सुन ले एक ठन गाना सुनथन, जलगावा थे खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन।

0: जवैया सोनतोले संगवारी हो गाना गावत रहीन है खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन अवनिधि गोट बात करत बेरा हो गए कार्यक्रम बताए के जाए के तो संगवारी हो काली संझा चौपाल में गोट बात संग किसान वाड़ी में सुनिया क्रम आज की सलाह जमा जानकारी के विषय हुई पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए आवश्यक तैयारियां जानकारी दी डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय जैविक प्रबंधन संस्थान बड़ौदा संघ में आज के प्रश्न और गीत संगीत घलो हुई अब आज के कार्यक्रम ले देव विदा सबो संगवारी मल्ला राजेश यादव
1: और निधि शर्मा के
0: राम राम, राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म गैंगस्टर में अभिजीत भट्टाचार्य और सुनिधि चौहान को, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।

हंगामा फिल्म में अभी आप शान और साधना सरगम को सुन रहे थे। गीत के बोल समीर के थे और संगीत था नदीम श्रवण का। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान को फिल्म दिल मांगे मोर में। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं चंद्रकांत गंधर्व। लीजिए सुनिए चंद्रकांत गंधर्व और साथियों के सुरों में ये संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुगम संगीत, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में, लीजिए सुनिए चंद्रकांत गंधर्व और साथियों को।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे चंद्रकांत गंधर्व को। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और हॉकी अंडर 18 एशिया कप में कप्तान केतन की हैट्रिक, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई अंडर 20 से, जहां एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हांगकांग में पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने इस जीत के साथ नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 19 वर्ष

0: पूजा ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.93 मीटर की कूद लगाकर सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं इससे पहले निपम ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण को यादगार बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण, वहीं साधना रवि ने महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में रजत पदक जीता।
1: पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता ने पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि चीनी ताइपे के शेंग किन लो दूसरे और जापान की चिहिरो ओबाता तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए कहा है कि नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में शानदार स्वर्ण के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 18 साल के नितिन ने शनिवार को भी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और 2 बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके संदीप कुमार को रोमांचक मुकाबले में हराया था। वहीं महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में साधना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। चीन की यिंकिंग जी ने स्वर्ण, जबकि कजाकिस्तान की मारिया शिचपाचेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2024 में दुबई में हुए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत 7 स्वर्ण सहित 29 पदकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं अभी ताज़ा जानकारी हमें मिली है, महिला डिस्कस थ्रो में अमनंत कंबोज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं पुरुष डेक्थलॉन में राहुल ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। और नितिन ने हाल ही में हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 वर्षीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर और 2 बार के ओलंपियन संदीप कुमार को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यू चंडीगढ़ की ओर, जहां पर आईपीएल के क्वालिफायर 2 का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। यशस्वी जायसवाल इस मैच में 1 रन पर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर कगिसो रवाडा का शिकार बने। वहीं रविंद्र जडेजा 34 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। रियान पराग कप्तान राजस्थान के, उन्होंने 6 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर 11 रन बनाए। और वैभव सूर्यवंशी 26 गेंद पर 47 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। अब बात महिला क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में 38 रन से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। आइए सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। कप्तान स्मृति मंधाना पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर लॉरेन बेल का शिकार बनी। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्ज ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भाटिया ने 54 रन और जेमिमा ने ताबड़तोड़ 69 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 13 गेंद पर 22 रनों का अहम योगदान दिया। भारत ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। लॉरेन बेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड को 18 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लगा। सोफिया 16 रन बनाकर क्रांति गौड़ का शिकार बनी। क्रांति ने एलिस कैप्सी के रूप में भारत को दूसरी सफलता दिलाई। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद हीदर नाइट और एमी जोन्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला। अंग्रेज टीम को 101 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। एमी ने 67 रन और नाइट ने 21 रन बनाए। एमी के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी बिखर गई और पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई। नंदनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट, क्रांति ने 2, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो विश्व कप से पहले भारतीय टीम अपना

0: टीम कॉम्बिनेशन को सही करना चाहेगी और पहले मुकाबले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन कर अच्छा खेल भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में उलटफेर का दौर जारी है। पुरुष सिंगल्स में राफेल खोलिंगन ने बेन शेल्टन को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं यानिक सिनर भी जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से हारकर बाहर हो गए। आइए जानते हैं खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में।
1: राफेल कोलिग्नन ने बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। कोलिग्नन की इस जीत के साथ टॉप हाफ ड्रॉ में अब सिर्फ एक टॉप 8 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ही शेष है। 2 घंटे 3 मिनट की इस जीत में कोलिग्नन ने 49 में से 43 फर्स्ट सर्व प्वाइंट हासिल किए और उन्हें ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के 62वें नंबर के खिलाड़ी राफेल कोलिग्नन पिछले 13 सालों से पहले ऐसे बेल्जियन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में टॉप 5 सीड खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले ये कारनामा 13 साल पहले कोच डॉर्सिस ने विंबलडन में राफेल

0: आइए जानते हैं खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में।
1: राफेल कोलिग्नन ने बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। कोलिग्नन की इस जीत के साथ टॉप हाफ ड्रॉ में अब सिर्फ एक टॉप 8 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ही शेष है। 2 घंटे 3 मिनट की इस जीत में कोलिग्नन ने 49 में से 43 फर्स्ट सर्व प्वाइंट हासिल किए और उन्हें ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के 62वें नंबर के खिलाड़ी राफेल कोलिग्नन पिछले 13 सालों से पहले ऐसे बेल्जियन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में टॉप 5 सीट खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले ये कारनामा 13 साल पहले कोच डॉर्सिस ने विंबलडन में राफेल नडाल को हरा कर किया था। पिछले साल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले में भी राफेल कोलिग्नन ने बड़ा उलटफेर किया था जब उन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हरा दिया था। ये उनकी दूसरी बार किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ जीत थी। कोलिग्नन का अगला मुकाबला इटली के माटेओ अर्नाल्डी से होगा जिन्होंने 2021 में फाइनल में पहुंचने वाले स्टेफानोस सित्सिपास को 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 से हराया। दूसरे मुकाबलों में ऑगर अलियासिमे ने अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा को 4-6, 6-0, 7-5, 6-1 से हराया और कोबोली ने वू यिबिंग को 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी। 2021 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले माटेओ बेरेटिनी ने 22वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्थर रिंडरक्नेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका के खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा ने फ्रांस के लुका वैन एश को 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3 से हराते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वहीं कल हुए एक और बड़े उलटफेर में 56वीं रैंकिंग पर काबिज जुआन मैनुअल सेरेंडोलो से यानिक सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी से सिनर ने लगातार 30 मैचों में जीत दर्ज की थी और उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: भारतीय टेनिस प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाले भारतीय मुकाबलों पर होंगी जहां एन बालाजी और यूकी भामरे पुरुष डबल्स में अपने अपने मुकाबले खेलते नजर आएंगे। वहीं स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का भी मुकाबला जारी है। सीधे रुख कर लेते बैडमिंटन कोर्ट की ओर जहां पर आज भारतीय खिलाड़ियों का दिन मिला जुला रहा। कुछ खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश किया तो कुछ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को 19-21, 21-17, 21-13 से हराया। सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया के SJCO और WH किम से होगा। वहीं मिक्स डबल्स में कपिला और तनिषा क्रस्टो ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 4 जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तोह ई वेई के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन फैंस को अनुभवी पीवी सिंधु और शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य से भी उम्मीदें थी लेकिन दोनों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। कप्तान केतन कुशवाहा की हैट्रिक की मदद से भारतीय टीम ने पहले पूल ए के मुकाबले में कल कजाकिस्तान को 13-0 से मात दी।
2: कप्तान केतन कुशवाहा ने 3 गोल करके भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई जबकि प्रहलाद राजभर, आशीष तानी पूर्ति, अंश बहुता और शाहरुख अली ने 2-2 गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। दूसरी ओर कजाकिस्तान की टीम लगातार दबाव में नजर आई। भारत के लिए शाहरुख अली ने 12वें मिनट में सर्कल के अंदर से बेहतरीन गोल किया। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद प्रहलाद राजभर ने एक और गोल करके भारत के बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी गोल होते रहे। कैप्टन कुशवाहा ने 18वें मिनट में गोल किया जबकि गाजी खान ने 20वें मिनट में 4था गोल करके बढ़त में इजाफा किया। शाहरुख ने शानदार फिनिश के साथ अपने 2 गोल पूरे किए और पूर्ति ने 30वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इसे भारत ने हाफ टाइम तक 6-0 की बड़ी बढ़त बना ली थी। तीसरे क्वार्टर में भारत के 5 में से 4 गोल पेनाल्टी कॉर्नर से आए। बहुता और पूर्ति ने 2 गोल किए। क्वार्टर के आखिरी मिनट में कुशवाहा ने एक पेनाल्टी कॉर्नर सहित 2 गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने तीसरा क्वार्टर 11-0

0: की बढ़त के साथ खत्म किया। भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में भी दबाव बनाए रखा और शानदार जीत दर्ज की। आकाशदीप ने 51वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। भारत का अगला मैच 31 मई को मेजबान जापान से होगा, जहां टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बधाई दी है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में पहलवानों के शानदार प्रदर्शन और उनके खेल कौशल की सराहना की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। श्री रिजिजू ने भारतीय कुश्ती टीम की शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए इसे देश के खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रतियोगिता के पुरुषों की फ्री स्टाइल और महिलाओं की कुश्ती टीमों ने टीम में खिताब जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 9 पदक हासिल किए, जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया उस युवा शतरंज सितारे के बारे में बात करने की, जिन्होंने अपनी सोच, साहस और अद्भुत शतरंज खेल से पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। डी गुकेश। आज ही के दिन जन्मे तमिलनाडु की धरती से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने वाले गुकेश ने यह साबित कर दिया कि अपने सपने उम्र नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। उन्होंने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया और फिर अपने शानदार खेल, शांत स्वभाव और अद्भुत रणनीति से दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को मात दी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने भारत का तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयां छुएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश का नाम रोशन करते रहें। स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्वालिफायर 2 के मुकाबले की ओर, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 49 रन बनाकर टीम को अकेले अपने दम पर संभाल रहे हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और कगिसो रबाडा ने भी 1 विकेट लिया है। जशन होल्डर 2 विकेट लेकर 11 रन दिया है उन्होंने 3 ओवर में। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवान

0: कटौती तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा

0: माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। 6ठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत

0: की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए सुखविंदर सिंह को फिल्म टशन में। गीत के बोल पीयूष मिश्रा के और संगीत विशाल शेखर का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप यूनुस हुसैन खां का गाया राग बिहागड़ा सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। आइए सुनते हैं पहला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचरी देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, ग्राम मुलमुला बेमेतरा से सेखन राम साहू, अमरिका बाई, लेखनी रोशनी चहक साहू, यहीं से नेत्राम साहू, मनीराम लक्ष्मी साहू, बिंदु डिंपल रमेश्वर साहू, मलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, वर्धमान रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से सभी श्रोता साथी, पलारी रोहांसी से डगेशा राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जानवी, नूतन साहू, महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश और तारिणी ठाकुर, बाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, अमलेश्वर से सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति रेयांश ठाकुर, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, अल्फैज खान, साधिया खान, अयाज खान, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका पूजा सिंह, लिलू ऋतु सिंह, ऋषभ सिंह, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और असलम अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, नलेश्वर नगर, नखेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, सहसपुर लोरमी से मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलेचंद बड़कू साहू और दुर्गेश कुमार, दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार और आशा भोसले को शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत है एस डी बर्मन का।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं भाटापारा से बजकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, पेंशनबड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला यादव, कनक गुनगुन यादव, बेबी अदिति और तन्मय यादव, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत और शुभम रावत, पायरा इवारा से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति छाया बंछोर, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, करीपदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा गिन्नी, लल्ली भाविका और झावेन्द्र वर्मा, खैरागढ़ से रविन्द्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा, अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी, हटरी चौक बिलाईगढ़ से रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन, जुड़वा चौक सरंगपाल से

रामचंद्र देवांगन, शीतल सुनैना, पिंकी यश, युवराज सिंह और गीता देवांगन, मंगला मटिया जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, सिरमुंडा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले और राजेंद्र कुमार दामले। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म दिल एक मंदिर है में लता मंगेशकर को, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम जैन और शौर्य जैन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, जिकेंद्र यादव और योगेश यादव, बेलरगांव से हावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, समगा से मोनिका जैन, मीना जैन और आदेश जैन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी और शरद कुमार माखीजा, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार साहू, लके सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म असली नकली में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को हसरत जयपुरी का लिखा गीत और संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए अब सुनिए अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चोबाराम वर्मा और दुलारी वर्मा, बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी और ज्योति वर्मा, चटौदा सरगांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषकृत और भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, पटपर डोंगरगढ़ से रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, रुआबांदा भिलाई से

आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। शिव चौक साकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार साहू और संध्या साहू, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन और आशीष देवांगन, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटेक से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, हरदेव लाल पारावार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू और सन्नी कोमल यादव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार

रोशन कुमार, बंशीलाल और लबी श्रीवास्तव, बाजारपारा बेमेतरा से सनत कुमार यादव, राजू दिलीप यादव, बरातू यादव, आदित्य यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और मान्या सिंगरौल, औरंगाबाद से राजेश साबले, पाटर शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, सुष्मिता सेन, विनीता और पिंकी सेन, जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गाता पार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव, यहीं से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव और लक्ष्मी यादव, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजिद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर माया फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत सलील चौधरी का।

यादें अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लकी सिन्हा, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा सारथी, कोटा रायपुर से योग्यता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और उज्जवल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा, जनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, कुमारी सुनीता, रिश्वंत साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू, रंजीत सिंह साहू, ग्राम भिलौरी बावन लाख बेमेतरा से रोहिणी नागेश्वरी साहू, खुलाशा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हेमनत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू, अहिवारा दुर्ग से डबल कुमार धीवर, डब्बू धीवर, जतिन हेमराज बाबू, हेमन राज बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत राजू धीवर, लक्ष्य धीवर, आचल माही नानू पार्थ, भावना अनमोल और राजा धीवर, अछोटा धमतरी से बेसत राम देवांगन, मानकीबाई, गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और सेजल, धवल लवन काव्या और तेजस्वी देवांगन, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, खट्टी महासमुंद से सूरज सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा और ओमकार शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म श्री 420 में मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर को शैलेंद्र का लिखा गीत और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन

प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो टाक स्टूडियो, अभी आंकड़े में 5:23 और 20, 21, 22, 23 सेकंड हुए हैं। हेलो टाइम ठीक है मैडम? टाक स्टूडियो टेस्टिंग ओके। अब आइए चलते हैं ट्रांसमिशन स्टूडियो।